नमस्कार, एफएम बैंड 102.2 7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 दे वैसाख महीने दी 26 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 16 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज की सभा के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

पेशने सर्यास्य प्रसारित होने वाले प्रोग्राम द्योनदा प्रसारण समा FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज दे सवेर दे सफर दा आगाज परमात्मा ने नाम सुमिरन दे नाल 6:15 ते तुसी सर्वन करोगे भक्ति रस दे नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। सात बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 7:02 ते जानकारी दे नाल भरपूर प्रोग्राम होएगा गुड मॉर्निंग जलंधर। ₹8:30 ते साडे प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे। ₹8:40 ते पंजाबी गीत संगीत का सफर होएगा प्रोग्राम होएगा अड्डी टप्पा। ₹9 तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 9:02 ते प्रोग्राम होएगा दिल

परमात्मा का नाम ही सच है। जेकर असी हर घड़ी हर पल उसका सुमिरन करने हैं तो सानू सारिया चीज़ा आप मुहारे सौखे ते सोहणे तरीके दे नाल मिल जांदियां ने।

मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मुझ में तुझ में बस भेद यही है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में।

स्वार्थ बिना जो दे दिया, स्वार्थ बिना जो दे दिया वही हुआ अनमोल। ईश्वर ऋणी उस भक्त के, प्रेम न जाए तोल, प्रेम न जाए तोल।

एफ एम बैंड 102.6 सत मेगाहर्ट्ज़ से हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी भगती रस दे नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से कई सुई के मुताबिक 7 बजे ने वेला हो रहा जी एफ एम न्यूज़ हेडलाइनस का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जलमार्ग राही सुरक्षित अते बिना रुकावट आवाजाही लिए भारत दे समर्थन नु दोहराया है। ईरान दे विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि भारत पश्चिमी एशिया विच शांति स्थापित करन विच वड्डी भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक होने संबंधी मामले च एक मुख्य साजिशकार पीवी कुलकर्णी नु गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तारा जिले दे भोजशाला कॉम्पलैक्स नु हिंदू मंदिर ऐलान कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन की बचत लई कई उपावां दा ऐलान किया है। हलवारा हवाई अड्डे ते एयर इंडिया की पहली उड़ान दे आउण नाल पंजाब दा लुधियाना भारत दे व्यापारक हवाबाजी नैटवर्क नाल जुड़िया। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ च ट्रिब्यून चौंक फ्लाईओवर लई दरख्तां दी कटाई ते रोक लगाई है। चोण कमीशन वालों केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध 15 जून तो कराउण दा ऐलान। बैंकॉक च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन विच सात्विक साईराज

अरे वाह अरे वाह, आज ते सवेरे सवेरे आवाज कादी आई। अच्छा ये आवाज सी, मैनू लगता है आवाज नू दोबारा तो सुन के देखिए कादी आवाज सी। अरे आवाज आवाज है, आहा तुहाडी रसोई चो कुकर दी सीटी दी आवाज आ रही है मैनू। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ एहो जी आवाज़ां सवेरे सवेरे सारे दी रसोई चों आउंदियां आ। कुकर दी सीटी, बर्तना दी ठक ठक दी आवाज़। और पर मेरे स्टूडियो दे विच आवाज़ आ रही है दिल से दिल तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दी आवाज़। जी हाँ बिल्कुल निशा, बिल्कुल तैयार है गुड मॉर्निंग जलंधर दा एक खूबसूरत सिलसिला लेके। कुकर दी सीटी दी आवाज की गल, आज आलू वाले परौंठे बने लगे ने सवेरे सवेरे, या फिर दाल, या फिर किया, अरे या फिर रामा तोरी। हाँ कोई ना कोई सब्जी जड़ी है ना वो कुकर दे विच बैठी ना उबाले खा रही है कि बस मैं हुण बनन नू बिल्कुल तैयार हाँ। जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग जलंधर का सिलसिला लैके बिल्कुल निशा तुहाडे नाल तैयार है। और एक खूबसूरत सिलसिला तुसी अपनी दोस्त निशा दे नाल एंजॉय कर रहे हो और करोगे भी। ते मैं क्या इस सिलसिले दे विच ना मेरे नाल 102.7 FM नाल दे नाल 103.6 MHz और न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे उत्ते बहुत सारे स्रोते जिहड़े है जुड़ चुके ने। ओ लब गए लब गए लब गए शूज लब गए हुण। आ हाँ देखिया छोटू नू ना सवेर दे अपने शूज नहीं सी लभदे पे ते रौला पाया होया सी पूरे घर दे विच कि मेरे बूट किथे गए बूट किथे गए। स्कूल जाण वास्ते लेट हो जाओगे, फटाफट तो अपने शूज पा लो। और आवाज आ गई है कि दूध का ग्लास बिल्कुल तैयार है। ओहो पिंक पिंक दूध ग्लास दे विच, वाह जी वाह, से स्ट्रॉबेरी वाला दूध मिले लगता है। क्यों छोटू आ गई ना चेहरे ते स्माइल एक, अरे वाह। गुड़िया नू भी मिल गया, अरे गुड़िया दा फ्लेवर चॉकलेट, ओके कहना मतलब कि एक

और 1929 की गल करिए, अमेरिका दे हॉलीवुड विच पहली बार अकादमी पुरस्कार जिहड़ा आ ऑस्कर जिहड़ा आ ओह दित्ता गया सीगा। 1975 दे विच जापान दे जिनको ताइबोन माउंट एवरेस्ट की चोटी के उत्ते पहुँचने वाले दुनिया की सब तो पहली महिला जिहड़ी है वह बने सी। और 2013 के अमेरिकी विज्ञानिका ने इंसानी खून के कलोन की सब तो पहली बार स्टेम सैल निकालन की कढ़न की सब तो वड्डी सफलता जिहड़ी है हासिल की थी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

देसी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टम टम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम ta ta ra pa pa pa ta ta ta ta ra ra ra ra ta ra pa pa pa ta ta ta oh my sita

जाननाया जाननाया किशोर कुमार दी आवाज़ इस गीत ने सारा वो सफ़र जिहड़ा है ना तरोताज़ा कर दिता, जिहड़ा सफ़र हमेशा आकाशवाणी दे नाल बनिया रहिंदा है। हो गया ना पुरानियां यादां ताज़ा, हो गई है ना। हाँ, लेकिन किशोर कुमार दी आवाज़ इस शरारती ते नटखट जे गाने ने दस ही दिता कि सानू हजे भी बहुत सारिया इहो जिहियां चीज़ां ने जिहड़ियां आउंदियां ही नहीं हैगियां। कोई गल नहीं, सीखांगे तो आ भी जाणगियां। लेकिन मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे नाल नाल ना तुहानू अवेयर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैल माई डियर प्यारे प्यारे स्रोतियो, जिमें कि तुसी सब जानते हो कि देश दे विच जनगणना की प्रक्रिया जिहड़ी है शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है। और उत्थे ही कुछ शरारती लोग जिहड़े ने ना, जिहड़े वेले दिमाग जिन्हों असी कह सकते हैं, उन्हों का

बिल्कुल जी, दिल से दिल तक 102.4 या 7 FM और न्यूज ऑन एयर ऐप और 103.6 MHz के जरिए तुम बने हुए हो। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जालंधर। लो जी लो, तुसी गल कर रहे सी कि मैं कार चलानी सीख ली तुसी। अरे वाह, कार चलानी सीख ली। अच्छा, कार चलानी सीख ली, टू व्हीलर चलाना सीख लिया, तुसी कई एक चीज होर जिहड़ी सीखने वाली जरूरी सी, वो सीखी कि नहीं सीखी? ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी सीखी कि नहीं सीखी? आहो, ओदी गल करदी मैं, होर केड़ी गल करनी आ? कार चलानी सीख ली, टू व्हीलर चलाना सीख लिया। लो जी, कह देने कि सड़क पर गड्डी चलाना सिर्फ एक स्टीयरिंग फड़ना जिहड़ा आ ओह नहीं है, सगों ट्रैफिक के नियमों, ट्रैफिक की जिहड़े एक साइंस हुंदे ने ना, उन्हों समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ साइंस जिहड़े मैं शायद रेडियो के जरिए थोड़े नाल एक्सप्लेन कर सकां, समझा सकां, तो उहदे विचों सब तो वड्डा साइन जे असीं गल करिए ट्रैफिक साइंस की गल करिए, लाल रंग का साइन जिहड़ा तुहानूं ऑन रोड मिल रहा है, यानी कि गहरे लाल रंग का सर्कल दे विच एक साइन होएगा वो तुहानूं मिलेगा, इहदा मतलब है कि पूरी तरह रुक जाओ, भावें सड़क खाली है, भावें उहदे उत्ते ट्रैफिक है, रुक जाओ मतलब रुक जाओ, स्टॉप हियर। नो एंट्री वाले एरिया दे विच जो तुसीं पार्किंग कर दिंदे हो ना, ते तुहाडी गड्डी टो करके लै जांदे आ, समझदे हो ना? ये समझ रहे हो ना, ये पता है ना? जिन्हें जिन्हें हुनी चलानी सीखी है उन्होंने दस रही हाँ। नो एंट्री का साइन उत्थे ही लगा होंगे जिथे गड्डिया के जाने की मनाही होवे, और ये साइन जो असी गल करिए एक सर्कल दे विच एक लाइन जिहड़ी है वो खिची होंगी है, इहदा ये सानू दसदा है कि इस रस्ते दे उत्ते जाण दी मनाही है, गलत रस्ते ते जाण नाल हादसा भी हो सकता है ते चलान भी हो सकता है।

वाह जी वाह, तुसी सुन रहे हो 102.7 मेगाहर्ट्ज़। गुड मॉर्निंग जलंधर का सिलसिला चल रहा जी। मन पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है रोजाना दिया आम गल्लां दे पिछे एक लुकिया हुंदा विज्ञान, आसान बोली विच असी समझ लैंदे आ। मैनूं थोड़ी जी प्यास लगी सी, मैं क्या चल पानी पी लवां, मैं ते पानी पी के तुहाडे नाल गल्लां करांगी। तुहानूं पता है कि रोब मारन वाला केड़ा स्टाइल हुंदा? कुड़ियां का तो होंगे कि अच्छी अच्छी ड्रेसिस पा लिया और मेकअप कर लिया, लेकिन गभरुआ का कड़ा स्टाइल होंगे? मुछनू वट देना। हाँ जी बिल्कुल जी, यहोजी चीज़ जिन्हों लोग अक्सर रोब भी कहते ने, स्टाइल भी कहते ने, मर्दानगी की निशानी भी मनते ने। जी हाँ, गल करिए मुछा दी। मुछा पर की तुम जानते हो, मुछा सिर्फ चेहरे की शान नहीं होंगी, सगों ये साढ़े शरीर का एक कुदरती सुरक्षा कवच भी होंदिया ने। समझ गए ना तुसी? हाँ सियाने हो। अच्छा हुण अपनी अपनी मुछा नूं हाथ लगा के देखदे हो कि मेरी मुछा किन्नियां किन्नियां ने। आ हाँ हैगियां जी, हैगियां, वाधू मुछा आ, वाधू है। देखो जी, सब तो पहला असीं गल करदे आं धूड़ ते प्रदूषण तों बचा करवाउंदियां ने। जदों असीं घरों बाहर निकलदे आं या खेतां विच, सड़कां ते, बाज़ारां विच, हवा विच मौजूद जिहड़ी धूड़ हुंदी है, मिट्टी हुंदी है, छोटे छोटे कण हुंदे ने, साडी साह दे नाल शरीर दे अंदर जाण दी पूरी पूरी कोशिश करदे ने। पर मुछा मुस्टैक्सेस हाँ एक कुदरती एयर फिल्टर दा काम करदा है। बिल्कुल जी, मुछा दे नाल जिहड़े मुछा दे असी वाल है उन्हां दी गल करिए, कई धूड़ दे कणां नूं रोक लैंदे ने, जिस दे नाल फेफड़िया तक घट गंदगी पहुँचदी है। इस करके कुछ लोगों नूं एलर्जी, छिक्कां ते धूड़ नाल होण वाली तकलीफ तो भी कुछ हद तक राहत मिल जाती है, जिन्होंने सोहणियां जिहियां मुछां नूं रख्या ताव दिंदे ने। इन्ना ही नहीं, मुछा नक दे आले दुआले नमी बनाउण दे विच भी पूरी दी पूरी मदद करदियां ने। सर्दियां जां सुक्की हवा विच जिहड़ी साडी स्किन हुंदी है उसनू सुकण तों, जलन तों भी बचाउंदियां ने। हुण जरा धुप्प दी गल करिए, बड़ी तिखी तिखी निकली हो जांदी है। हाए होए धुप्प है ना। खोज जिहड़ी है, बहुत सारी खोजां जिहड़ियां आ उहनां दी गल करिए तां दसदियां ने कि घणियां मुछां जिहड़ियां हुंदियां ने ना सूरज दियां हानि

0: सर मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, है ना। और पानी पीने की बात करें तो कई बार ज़्यादा पानी पीने से पेट भी भरा भरा महसूस करता है और पेट डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है।
1: नहीं, ज्यादा पानी का मतलब ये है कि जितनी आपको प्यास है उतना ही पीना चाहिए, एक्सेस नहीं पीना चाहिए।
0: जी, यानी कि लिक्विड
1: तो
0: फॉर्म में पानी के
1: हाँ,
0: अलावा हम
1: जितनी
0: जैसे
1: आपकी क्षमता है उतना ही पानी पीजिए, उससे
0: जी
1: ज्यादा तो कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए।
0: यानी कि लिक्विड फॉर्म में अगर बात करें, जैसे आपने नींबू पानी बोला है, लस्सी बोली है, और भी अदर सोर्सेज हैं, मतलब पानी के अलावा जो एक लिक्विड फॉर्म में हमारे अंदर चीज़ें जानी चाहिए, वो ये नहीं है कि सिर्फ पानी की फॉर्म में ही जानी चाहिए, अदर फॉर्म्स के द्वारा भी हम अपनी बॉडी
1: हाँ,
0: को।
1: ये जैसे कि आम वाला मैंने बताया रेसिपी, ये आपको लू से बचाती है।
0: जी, यानी कि
1: बेल
0: इनकी
1: वाली बताई, ये भी आपको लू से बचाव करती है।
0: सर इसके अलावा अगर किसी का पेट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में पेट भी बहुत ज़्यादा लोगों के डिस्टर्ब होते हैं, तो आयुर्वेद में इसका जो एक ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है, वो कैसे किया जाता है।
1: पुदीने का सेवन कर सकते हैं आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर।
0: जी
1: पुदीना पुदीना आता है आजकल गर्मी में, तो पुदीने का शरबत ले सकते हैं
0: जी
1: नॉर्मल। बाकी तो फिर अगर ज्यादा दिक्कत है फिर तो मेडिसिन वगैरह की जरूरत पड़ती है,
0: जी
1: तो मेडिसिन का उपचार भी यहाँ बताना ठीक नहीं है, क्योंकि
0: और
1: जो जनरल होम रेमेडीज है, तो जैसे आप घर में अजवाइन है तो अजवाइन का पानी पी सकते हैं उसको, तो पुदीने का शरबत ले सकते हैं, नींबू पानी शिकंजी ले सकते हैं, तो घरेलू उपचार तो यही है।
0: जी, यानी कि होम रेमेडीज से हम अपनी बॉडी का जो एक टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, ताकि बैलेंस जो है एक बना रहे और हम स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सर
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा आप और क्या बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, जिससे वो अपने आप को गर्मी से बचा सकें।
1: यही है कि धूप में कम से कम निकलें, अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं, और जो मैंने कुछ चीजें बताई हैं,
0: जी
1: पुदीना है, नींबू है, इनका
0: जी
1: सेवन करते रहें
0: जी सर
1: नेचुरल चीजों का। बाकी जो आर्टिफिशियल चीजें आती हैं उन्हें अवॉइड करें।
0: सर जैसे कि बच्चे इस जो हैं वो पैकेट वाला जूस है या अदर चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्या मतलब उनको ये चीज़ें लेनी चाहिए या इसका अल्टरनेटिव सोर्स ये जो आपने बताया है वही होना चाहिए।
1: नहीं, अगर जूस कोई ले रहा है मार्केट वाला तो वो ले सकता है, मैं उसको अब ज्यादा डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यही घर में अगर चीजें अवेलेबल हैं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नींबू पानी ये चीजें
0: जी
1: नेचुरल है कम्प्लीटली,
0: सर
1: मार्केट में कोई भी चीज आएगी तो वहां पे डेफिनेटली उसमें प्रिजर्व करने के लिए चीजें डाले जाते हैं।
0: और
1: तो अगर
0: सर
1: फ्रेशली जूस ले सकते हैं आप कोई भी गर्मी में, तो गर्मी में देखिए गर्मी वाली चीजें भी भगवान ने बनाई है, कद्दू खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है,
0: जी
1: तो जितने भी ये आपके फ्रूट्स हैं इसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है।
0: यानी कि सैलेड भी अगर हम अपनी डाइट में ऐड करके रखते हैं तो हम अपने आप को, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं। जी
1: जी,
0: सर,
1: जितनी चीजें बताई हैं सब गर्मी में ही आती हैं और उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है।
0: जी सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स आपकी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। प्रोग्राम में शॉर्ट नोटिस पर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, डॉक्टर सौरभ जिहड़े सी इस वेले साडे नाल सी, जिन्हां ने बिल्कुल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिती है कि लिक्विड फॉर्म, जिदा कि बहुत सारे लोग कह देंदे कि ज़्यादा तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए है, पानी कई बारी पानी दे नाल जिहड़ी साडी प्यास है वो शांत भी नहीं हो पाती, इस दे लई ज़रूरी है कि पानी नू यानी कि लिक्विड फॉर्म दे विच जिहड़ियां चीज़ां जिवें कि लस्सी है, गन्ने का रस है, आम पन्ना है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ये घर बनाइयां जा सकदियां ने। और कुदरत ने सानू इहो जिहियां बहुत सारियां चीज़ां दित्तियां जिवें कि बेल, बेल दा जूस जिहड़ा आ उन्होंने दस्सिया कि वह भी असीं घर बना सकते हैं, उहदे लई भी कोई बहुत ज़्यादा समा जिहड़ा नहीं लगता, और ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां साडे बॉडी दे टैंपरेचर नू मेनटेन करन दे विच और नाल दी नाल साडी बॉडी नू डिहाइड्रेट होण तों बचाउंदियां ने। और उम्मीद करदी हां कि यह जानकारी जिहड़ी है साडे लिसनर्स दे जरूर काम आएगी। फिलहाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर नू इत्थे वाइंड अप करन दी दे दिओ इजाज़त एक छोटे जिहे गीत दे नाल।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है।

0: Rainbow FM! Rainbow FM!
1: बिल्कुल सी बिल्कुल, इस वक्त दिल से दिल तक आकाशवाणी दीक्षित दोषारिया।

0: Ganoz, ye hai FM Rainbow, isi ka naam zindagi hai pyare haan.
1: FM band 102.7 MHz se, Naumatri ne aur vela ho raha FM News Headlines sa. भारत अते संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडारा लंबे समय लई एलपीजी सप्लाई अते रक्षा सहयोग नाल संबंधित कई अहम समझौतियां दे दस्तखत कीते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे ते दूजे पड़ा ते नीदरलैंड्स पहुंच गए ने। सीबीएसई दी 12वीं जमात दे विद्यार्थियों लई उत्तर पुस्तिकावां दे पुनर्मूलांकन दी सहूलत दा ऐलान कीता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक होने संबंधी मामले च एक मुख मुलजम पीवी कुलकर्णी नू पुणे तो गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ भारत ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का राष्ट्रीय टीचा रखा है। पंजाब पुलिस ने लुधियाना ते होर थावां ते 132 विद्यार्थियों नूं गिरफ्तार करके उत्तरी भारत दे हुण तक दे सब तो वड्डे साइबर धोखाधड़ी सिंडीकेट दा पर्दाफाश कीता है। लिबनान अते इजराइल 45 दिनां लई जंगबंदी वधाउण लई सहमत हो गए ने। होशियारपुर नेड़ले पिंड चक समाणा विखे कल शाम एक बोरवल विच डिगे 4 साल बच्चे नूं एनडीआरएफ एसडीआरएफ पंजाब पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों अते इलाका निवासियों के सहयोग नाल करीब 9 घंटिया बाद सुरक्षित बाहर कढ लिया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन दे सैमीफाइनल विच अज सात्विक साईराज रेकी क्रेंडी और चिराग शेट्टी दी डबल्स जोड़ी दा मुकाबला मलेशिया दे नूर इजुद्दीन अते हो दे से फेई नाल होएगा। आईपीएल क्रिकेट विच बीती रात लखनऊ विच खेडे गए मैच च लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 7 विकटां नाल हरा दिता है। ते सिंह हुण तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: Rainbow FM! Rainbow FM!
1: बिल्कुल जी, दिल से दिल तक आकाशवाणी दिख से दो जरिया सात मेगा हर से बने हुए सारे नाल और आकाशवाणी जलंधर अपना मना रहा है 78वां साल। और इस आकाशवाणी जलंधर के 78 साल पूरे होने के मौके पर तुम सारे जने बड़े ही अच्छे अच्छे मैसेजेस जिहड़े आ कर रहे हो, थोड़िया दुआवां थोड़ा प्यार ही है जिसे सदके असं इन्ने साल जिहड़े आ वो कढ ले। थोड़ा आकाशवाणी के नाल रिश्ता किन्ना पुराना, किन्ने साल हो गए तुम इस परिवार के नाल जुड़े आ, इस चीज़ को भी जरूर साझा करो ताकि सानू पता चल सके कि सारे स्रोते जड़े ने किन्ने पुराने ने ते किन्ने खूबसूरत एहसास, किन्निया खूबसूरत यादा जड़िया ने उन्हां दियां भी साढ़े नाल जुड़िया हुई ने। हलो जी, तुहाडे कल्ले होए मैसेजेस नूं होर भी ज़्यादा रौनक दे नाल भरिया होया बनाउण दे लई गल करिए। तां दोस्तों कह रहे ने जी, भुपिंदर सिंह चीचा जी का मैसेज है कि कहिंदे रहे कि जिहड़े दोस्त ने बिल्कुल एक आप बीती जिहड़ी अखां दे अगे बीती हुई गल सांझी कीती सी कि बापू वाली जिहदे विच बापू स्कूटी ते चार गड्डी ते लई जांदा सीगा दो पहिया वाहन दे उत्ते बच्चियां नूं ट्यूशन छड्डन जा रहे सी कि कित्थे जा रहे सी, ना आला देख रहे सी ना

0: पाल माँ ने बचा रखिया, हो सानू माँ ने बचा रखिया, भुखा किते मरी ना जावे, जीदा ना जग पाल रखिया, भुखा किते मरी ना जावे, जीदा ना जग पाल रखिया।
1: वाह जी
0: बहुत
1: वाह,
0: बहुत मेहरबानी जी, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी इन्ना खूबसूरत मैसेज कीता और मैं इनू बिल्कुल शिद्दत दे नाल ना सुन रही सी और एंजॉय भी कर रही सी। बिल्कुल जी, अगले दोसे मैसेज वाल बनने हैं जी, जरा ने सानू प्रोग्राम च मैसेज कीता।
2: हेलो दिल अपना पंजाबी, निशा मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस सैटरडे मैडम जी।
1: शुक्रिया।
2: सारे दोस्तां नू प्यार भरी नमस्कार। साडे आकाशवाणी दे 78 साल दियां बहुत बहुत वधाइयां मैडम जी, सारे दोस्तां नू, सारे आर्जिस नू, ते सारे ही आकाशवाणी दे सुनन वाले श्रोतावां नू मैडम जी। मैडम जी मेनू भी जुड़िया 30 साल हो गए ने मैडम जी, ते मैं भी बड़े चाव नाल आकाशवाणी दे प्रोग्राम सारे सुनदी हां। पहले चिट्ठियां मिठियां आंदा हुंदा सी, नाल आंदा सीगा भैणा दा प्रोग्राम आंदा सी, असी वध चढ़ के भैणा सारियां इकट्ठियां होके सुनदे हुंदे सी। हुण मैं FM रेनबो दे नाल जुड़ी हां, दिल अपने पंजाबी दे नाल जुड़ी हां मैडम जी, ते सारे सारे दोस्त बड़ा अच्छा प्रचार करते ने, बहुत सोनिया गल्ला दसते ने मैडम जी। अज सैटरडे हैगा वा मैडम जी, ठंडा मिठा दिन हैगा वा मैडम जी, वीकेंड है, ते नाल कल हैगा वा संडे। संडे नू मैडम जी सारिया दा रेस्ट डे है, पर साडे लेडीज दा कोई रेस्ट डे नहीं हैगा मैडम जी। उस दिन कोई स्पेशल ही आइटम बनानी पैंदी है, घर दे विच कोई रेसिपी नवी शेयर करनी पैंदी मैडम जी। ते नाल मैं अपने किचन विच पैर पिछे रखदी हां, पहले मेरा सुच रेडियो दे सुच दे उपर हुंदा है कि मैं बटन ऑन करके फिर गैस ता ऑन करा मैडम जी। ते मैं तुहाडी अपनी किरण रुला ग्रीन पार्क कपूरथला।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्ना प्यार देने दे लई। और अगला मैसेज प्रोग्राम दे विच शामिल कर लेने आ जिन्होंने सानू मैसेज किया है प्रोग्राम दे विच। और मैसेज आया है सुबह उठन सार अपनी धी का मूँह देख नाल बदलती है किस्मत। शास्त्रा विच धी नू घर की सब तो वड्डी शुभ मनिया गया। कुछ आदमियों की किस्मत उदों ही चमकती है जदों उन्होंने घर धी का जन्म हुंदा है। इसलिए जदों भी तुसी सवेरे उठो अपनी धी दे चेहरे वल जरूर वेखो। धियां ना सिर्फ अपने पिता की प्रसिद्धि वधाउंदियां हन, सगों उन्हां दी चंगी सेहत ते खुशहाली भी लैके आउंदियां ने। जेकर तुसी किसी जरूरी काम लई घरों बाहर जा रहे हो, अपनी धी दे सिर ते हौली हौली हाथ फेरो, तुसी देखोगे कि तुहाडा काम जिहड़ा आ जरूर सफल होएगा। बिल्कुल जी, धियां जड़ियां ने साडे परिवार की रौनक हुंदियां ने, और धियां दे सदके ही परिवार दे विच रौनक लगती है, और धियां दे नाल ही सारा प्यार जिहड़ा है ना वो प्यो नूं भी मिलदा।

जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: जगत साहिबा, मिर्जे दी बाकी हवावन चीर दे होया पलंच तेरे वीर तो कोई हंतूर निकल जाएगी।
1: जस चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले करो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन नहीं रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ फुला देवे।
3: एफएम रेड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुण तुसी सुणोगे प्रोग्राम पंजाबी तड़का।

0: रिटायर हो गई।
1: अच्छा जी, रिटायर्ड हो गए। पर मेरा मानना है कि
0: हाँ
1: जिंदगी भर बंदा पढ़ता ही रहिंदा,
0: जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही
1: रोज का
0: गल
1: एक
0: है।
1: पेपर है,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: हर
0: बहुत
1: एक
0: सही गल है।
1: पढ़ता भी पेपर है।
0: हाँ जी हाँ जी, ते नाल
1: ते
0: साथ अपने 90 साल की मुबारकां जी, अपने पापा
1: नब्बे
0: जी
1: साल
0: बिल्कुल।
1: नहीं, 90 साल, हाँ 90 साल है, पर अज एक खास दिन होर, अज होर मुबारकां बनदियां भी
0: अपने
1: दसते।
0: 75 1916 अपने अपने ना, जो आप 23 तरीक नू गए थे अपने 16
1: हाँ जी
0: आकाशवाणी के अंदर,
1: जी
0: 75 साल बनाया जो उस समय हमारे सर जी गया जो समय
1: अच्छा जी,
0: दूर सर, हाँ जी पुराना सारा देख के आया सी,
1: वाह जी
0: लाइव चलिया
1: वाह,
0: सी।
1: वाह जी वाह। ते अज एक होर दिन है बड़ा वधिया, ऑल इंडिया रेडियो दा फाउंडेशन डे है।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: ऑल इंडिया रेडियो जलंधर दा फाउंडेशन डे है,
0: हाँ जी
1: ते
0: हाँ जी,
1: किन्नवा
0: वो जिहड़ा
1: फाउंडेशन डे है,
0: स्वागत,
1: चलो ये दस
0: हाँ
1: दियो।
0: सदे साथ ही तुहानू मुबारकां दे रहा, तुहानू
1: मैं
0: बहुत
1: कहा
0: बहुत
1: जी
0: सारी
1: अज
0: आकाशवाणी
1: अठहत्तरवा
0: आया।
1: फाउंडेशन डे है मास्टर जी, अज
0: हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
1: तुसी अड़ गए हैं, मैं देखिया 10 विचों तुहाडे 3 नंबर बने। वो भी 3 नंबर यह है कि तुसी 90 साल दियां मुबारकां दित्तियां, चलो मैं 5 कर देना, क्योंकि
0: हाँ जी
1: तुसी वो भी दिन जे मनाया, वो भी असी थोड़े दिन पहला 8 मई नू जिहड़ा मना के हटे हैं, ते 9 मई
0: हाँ
1: नू
0: जी हाँ जी,
1: वाक
0: सुनया
1: थान
0: भी मैं तो, हाँ
1: ऑल इंडिया रेडियो जलंधर वालों कीती गई सी।
0: जी हाँ जी, बस गया भाई उसने भी सुने प्रोग्राम साढ़े ही।
1: अच्छा जी, वाह जी
0: हाँ जी
1: वाह,
0: हाँ जी, तो कहने तुम भाई प्रोग्राम करते, मैं तुम आकाशवाणी जलंधर में मुबारक दी पिछले
1: बिल्कुल
0: साल। हाँ
1: तुहानू ज्यादा मुबारकां, क्योंकि तुसी साडे लिसनर्स हो।
0: मैं देखो जी सर जी, सवेरे सवेरे सवेरे टेप ला के ना, रात 11 बजे तो प्रोग्राम सुनना।
1: अच्छा जी वाह,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: क्या
0: अज
1: बात है,
0: निशा मैडम आई थी, अज उन्होंने भी गलबात सुनी,
1: बिल्कुल जी
0: और
1: बिल्कुल
0: 10 बजे हाँ जी,
1: जी,
0: फिर 10 बजे आशा मैडम जी आई, उन्होंने प्रोग्राम बहुत वधिया पेश किया, लाइव भी बहुत वधिया लगा जी।
1: वाह जी वाह। ते हुण ये दसो कि अज
0: तो
1: वधिया जिहा गीत केड़ा सुनाइए।
0: सर जी प्रोग्राम इन्ना पेश पेश किया, प्लीज बागो बाग करता सारे
1: मैं जी बहुत बहुत
0: साडा भी
1: शुक्राना
0: दिल
1: तुहाडा,
0: नहीं मोह लिया।
1: बहुत बहुत शुक्राना। ते गीत दस दियो फटाफट, केड़ा प्ले करिए ते तुहानू ते
0: सर जी
1: साडे।
0: गाना है तेरी मेरी जिंदगी दा जी,
1: जी
0: गाना जी हैगा जी,
1: हाँ जी,
0: तेरी मेरी जिंदगी, तेरिया मोहब्बतां ने मार सुट्टिया
1: दस
0: जग
1: की
0: दी
1: करा। वाह जी वाह, सानू,
0: जिला
1: वाह जी वाह, सानू तुहाडियां मोहब्बतां ने मार सुट्टिया, तो तुहानू FM दियां
0: बिल्कुल
1: मोहब्बतां ने,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल सर जी, यही तुहाडे गुलाम जी पूरे पूरे आकाशवाणी दे,
1: लो जी, तुसी इन्ना प्यार
0: तुहाडे
1: करदे हो,
0: दीवाने
1: बहुत
0: पूरे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी प्रोग्राम दे विच पहुंचे, अपनी फरमाइश दसी,
0: हाँ
1: ते
0: जी
1: ओ
0: हाँ जी हाँ
1: पूरी
0: जी,
1: असी जरूर करांगे। ते दोस्तों देखो किन्ने खुश दिल मास्टर साहिब सीगे, मास्टर मोहन लाल जी, ते तुसी भी फटाफट पहुंचो, जिवें इन्हां ने अपनी फरमाइश बड़ी सोहणे अंदाज दे विच पूरी करवाई है, दिल टुंबिया है, लुट्टिया है साडा, उंजी तुसी लुट्टो मौका। तो मौका लुट्टण लई की करना है, 0181 43 174 पहुंचो, FM दे विहड़े विच पंजाबी तड़का प्रोग्राम चल रहा है, ते RJ रणजीत तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करन लई तुहाडे सन्मुख बैठा होया है।

0: डायरिया थे। हाँ
1: अच्छा जी,
0: जी हाँ जी।
1: ठीक है। ते FM सारा दिन चलता है?
0: मैं कहना भी इसको बगैर तो ऐडा काम चलता ही नहीं जाएगा।
1: वाह जी वाह। ते आज एक खास दिन है FM ना रिलेटेड,
0: हाँ
1: जलंधर
0: जी
1: ना
0: बिल्कुल।
1: AIR जलंधर ना रिलेटेड।
0: हाँ जी सुनने पे नहीं अपना शेर दा अज कहंदे बड्डे हैगा जी उन्हां दा 78वां।
1: वाह जी वाह। फाउंडेशन डे
0: हाँ हाँ
1: तुसी
0: जी हाँ
1: बर्थडे
0: जी
1: कहता, असी बर्थडे मान के केक कटा लेना तुहाडे तों है ना।
0: हाँ जी हाँ जी बाबू जी। जिंदगी
1: ते जिंदगी किवें चल रही है?
0: बढ़िया जी। सवेरे आ जाएगा बाबू जी काम पे
1: वाह जी
0: अपना
1: वाह।
0: FM ला जाएगा जी, रेडियो ला जाएगा, सारी दिहाड़ी चलता बाबू जी। इस तो बगैर अपना काम नहीं कर सकते जी।
1: वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी इन्ना प्यार करती हो। ते अज गीत केड़ा सुनोगे?
0: ए सुरेंद्र कौर जी का गया जी गाना। ठीक
1: जरूर सुनावांगे जी। शुक्रिया तुहाडा बहुत बहुत।
0: है जी।
1: दोस्तों 11:50 ते 21 सैकेंड हो गए। पिछे ना हटो, तुसी डायल कर लो नंबर 0181 43 144 ते पहुंचो FM दे विहड़े विच। दोस्त ने कहा है कि सुरिंदर कौर की आवाज़ दे विच गीत सुना दो, नाल हरचरण गरेवाल भी ने, वह भी सुनावांगे। एक तारा वजदा है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ 'ਤੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ FM ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ।
2: ਲਓ ਜੀ, ਜੱਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣੋ ਰਮਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਰਮ ਤੇਨੂੰ ਚੜਿਆ,

एफएम न्यूज हेडलाइंस। भारत ते संयुक्त अरब अमीरात ने पेट्रोलियम भंडारा लंबे समय लई एलपीजी सप्लाई अते रक्षा सहयोग नाल संबंधित कई अहम समझौतों उत्ते दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के दूजे पड़ा ते नीदरलैंड्स पहुंच गए ने। सीबीएसई ने 12वीं जमात के विद्यार्थियों लिए उत्तर पुस्तिकावां दे पुनर्मूलांकन की सहूलत का ऐलान किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीट यूजी 2026 प्रीख्या का पेपर लीक होने संबंधी मामले में एक मुख मुलजम पीवी कुलकर्णी को पुणे तो गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ भारत ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का राष्ट्रीय टीचा रखा है। पंजाब पुलिस ने लुधियाना ते होर थावां तों 132 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार करके उत्तरी भारत के हुण तक के सब तो वड्डे साइबर धोखाधड़ी सिंडीकेट का पर्दाफाश किया है। लेबनान ते इजराइल 45 दिनों लई जंगबंदी वधाउण लई सहमत हो गए ने। हुशियारपुर नेड़ले पिंड चक समाणा विखे लंघी शाम एक बोरवैल विच डिगे 4 साल बच्चे एनडीआरएफ एसडीआरएफ पंजाब पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ते इलाका निवासियों के सहयोग नाल करीब 9 घंटे बाद सुरक्षित बाहर कढ लिया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सैमीफाइनल में अज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इजुद्दीन गोह से फेई नाल होएगा। आईपीएल क्रिकेट में लंघी रात लखनऊ में खेडे गए मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 7 विकटां नाल हरा दिता है। ये सन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

0: कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवा नु चीर दे होया पलां च तेरे बिना तो कोई दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले करो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।
3: ओए होए, ओए गल नहीं बात नहीं, देडी रात नहीं, ऐवे रोला पाया, सिर दुखड़ा लाया। लगा यार एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़। हाय हाय हाय हाय, आ होई ना गल, आ गया, उड़ाते तोते पाते मोछे। ओए होए, ओए गल नहीं बात नहीं, देडी रात नहीं, ऐवे रोला पाया, सिर दुखड़ा लाया। लगा यार एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

दोस्तो, वेलकम बैक तुहाडा एक बार फिर प्रोग्राम होम स्वीट होम च। हुण गल करांगे असीं औषधी गुणां दा खजाना कहे जाण वाले सुहांजणा दी। आयुर्वेद विच इस नूं सुपरफूड भी कहा जांदा है ते स्वादी तां हुंदा ही है, शरीर लई पोषण दा पूरा स्रोत भी है सुहांजणा। हुण कई मरिंगा भी कहिंदे है, मरिंगा नूं मरिंगा ओलीफेरा भी कहा जांदा है क्योंकि बहुपक्षी रुख है ते इस नूं हिंदी विच सुहांजणा कहा जांदा है, सुजाणा कहा जांदा है, सींजण ते मूंगा वर्गे नावां नाल भी जाणिया जांदा है। अंग्रेजी विच इस नूं डर्मस्टिक ट्री भी कहा जांदा है ते पंजाबी विच सुहांजणा कहा जांदा है।

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलां च तेरे वीरा तो कोहा दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते घर बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी FM रेनबो जलंधर के प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ विच तुहाडा दोस्त RJ रणजीत तुहाडा स्वागत करता है। दोपहर के इस सुहाने वेले विच असी लैके आए हाँ वो गीत जो सिर्फ कन्ना नाल नहीं सीधे दिल नाल सुने जाते हैं। अज के प्रोग्राम विच असी सुनांगे वो मेलोडीज़ गीत जिन्हां दी खुशबू अज भी संगीत प्रेमियों के दिलों विच बसती है। साहिर दे शायरी अते शैलेंद्र दे एहसास, SD बर्मन ते मदन मोहन दा संगीत अते किशोर रफी लता हेमंत कुमार वर्गियां आवाज़ां दा जादू इस मिड डे मेलोडी प्रोग्राम विच चलेगा। हुणी तुसी गीत सुन के हटे हो खामोशी मूवी तो, बहुत शाम कुछ अजीब थी किशोर कुमार दी आवाज़ दे विच। 1969 विच आई इस फिल्म विच एक इमोशनल मास्टरपीस सी यह गीत। डायरैक्टर असित सेन ते मैंटल होस्पिटल दी बैकग्राउंड विच एक अजिही कहानी बनाई जिस विच प्यार भी सी, दर्द भी सी ते खामोशी भी। फिल्म विच राजेश खन्ना ते वाहिदा रहमान दी एक्टिंग बहुत सूटेबल, बहुत वधिया एक्टिंग सी। म्यूजिक इस फिल्म दे विच इस गीत नूं हेमंत कुमार ने दिता है ते लिरिक्स गुलजार दे सन। हुण तुसीं सुणोगे एक बहुत ही सोहना गीत जो ना तुम हमें जानो हेमंत कुमार दा गाया होया है गीत, ते फिल्म है बात एक रात की।

ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जानो, बात एक रात की। फिल्म तो है गीत, जिस फिल्म विच काम किया है देव आनंद वहदा रहमान दी क्लासिक केमिस्ट्री ने। क्लासिक केमिस्ट्री इस फिल्म दे विच दिखाई गई ते इस गीत नूं मैजिकल बनाउंदी है म्यूजिक कंपोज्ड जिहड़ा कीता होया है वह एस डी बर्मन दी मैजिक कंपोजिशंस ने। इस गीत विच मिस्ट्री भी है ते रोमांस भी है। हेमंत कुमार ते सुमन कल्याणपुर दीआं आवाज़ां विच गाया होया ए सॉफ्ट जिहड़ा वेलवेट लगता है गीत, वो दिल नू कित ना कित सुकून भी दिंदा है, एहसास एक ठंडक वाला एहसास। कितना पीसफुल म्यूजिक पीसफुल आवाज़ सी। हुण अगला गीत सुनोगे तुसी जे नैन डरे डरे, फिल्म का नाम है कोहरा ते इस दे विच जिहड़ा काम किया है विश्वजीत ते वहदा रहमान ने एज अ स्टार। इंजॉय करो इस गीत नू, आवाज़ दिती है हेमंत कुमार ने।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। लता मंगेशकर ते भूपिंदर सिंह दियां आवाज़ां दे विच तुसी सुन के हटे हो एक बहुत सोहना गीत। फिल्म दा नाम सी मासूम। हुण तुसी गीत सुनेंगे जो जाने वो कैसे लोग थे। प्यासा फिल्म तो ये गीत जिसनों कंपेयरिंग किया जिसनों मास्टरपीस बनाया है गुरु दत्त दी मास्टरपीस प्यासा सोसाइटी दे एक तिखे कमेंट ने। सायर लुधियानवी ते लिरिक्स अज भी रैलीवेंट लगते हैं इस गीत दे विच। हेमंत कुमार दी वॉइस अते गुरु दत्त दे एक्सप्रेशंस ए गीत हार्ट ब्रेक नू फिलोसफी बनाने विच कामयाब रहे सी ते अज भी ए गीत बहुत ज़्यादा सुनिया जाने वाले गीतों विचों एक है। इंजॉय करो इस गीत नू स्टेट यू FM रेनबो

जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हेमंत कुमार की आवाज़ दे विच गाया होया एक गीत प्यासा मूवी जो 1957 विच आई सी। हुण तुसीं गीत सुनोगे ओ माजी मेरे सजन जिसनू गाया है एस डी बर्मन ने। ते जेकर गल करिए तो एस डी बर्मन ने कल्ला म्यूजिक ही जड़ा है उहदे कंपोजर दे तौर ते काम नहीं करदे सी, ओ गाउंदे भी सी ते आवाज़ दे विच सुणांगे। गीत नूं लिखिया है शैलेंद्रा ने, तो फिल्म का नाम है बंदनी। तो करो इंजॉय इस गीत नूं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स दे प्रधानमंत्री रॉब चैटन नाल दुवल्ली गल्लबात करनगे। भारतीय प्रवासियों नूं भी करनगे संबोधन। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान नूं दहशतगर्दां नूं पनाह देण अते भारत खिलाफ गतिविधियां बंद करन बारे सख्त चेतावनी दित्ती। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर केंद्रीय सेहत

गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। प्रोग्राम चल रहा है जी, दिल आज शायर है, तो तुसी बने हुए हो मेरे नाल, यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल इस खास प्रोग्राम दे विच, ते असी इंजॉय कर रहे हैं तुहाडे भेजे हुए बहुत ही सोहणे सोहणे मैसेज ते नाल नाल अज मैं तुहानू सुनावांगी होर भी बहुत सोहणे सोहणे खूबसूरत जे नगमे। प्रोग्राम दे विच जिन्हां ने हुणे ट्यून इन किया है जी, मैं दस दवा एक बारी 9855101027 दे उत्ते तुसी अपने मैसेजेस मैनू भेजने ने। खूबसूरत जीआं लिखतां लाइनस, किसी पोइट नू फॉलो करदे हो तां उहनां दीआं लिखीआं होईआं लाइनस, या फिर जे तुसी आप लिखदे हो ते आप दीआं लिखीआं होईआं लाइनस, नंबर 9855101027 दे उत्ते प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच। ते लो जी, प्रोग्राम दा पहला मैसेज मैं पढ़न जा रही हाँ, राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चेलियां सुल्तानपुर लोधी तो भेजिया इन्होंने मैसेज जी, बहुत ही खूबसूरत जिहा। कहिंदे आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया जी इस खूबसूरत जय मैसेज नू भेजन वास्ते। इस तो अगला मैसेज जड़ा आया है वो मैसेज

मैसेज आया है जी, लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी। निकलदे ने आंसू जदों मुलाकात नहीं हुंदी, निकलदे ने आंसू जदों मुलाकात नहीं हुंदी, तड़पदा है दिल जदों गलबात नहीं हुंदी। तुसी याद ना आओ एदा कोई मौका नहीं हुंदा, असी तुहानू भुल जाइए इदां दी कोई रात नहीं हुंदी। बहुत बहुत शुक्रिया जी राकेश कुमार जी, इन्ना सोहना एक मैसेज भेजन वास्ते इस प्रोग्राम दे विच। खैर मैसेज बहुत सारे आ रहे ने होर भी। एक मैसेज आया जी बहुत खूबसूरत जिहा, थोड़े जे कोशिश करो कि तुसी छोटे मैसेजेस भेजो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे मैसेजेस जड़े ने ना वो प्रोग्राम दे विच शामिल करने थोड़े जे मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि मैं सारा मैसेज जड़ा ना वो तुहाडा पढ़ नहीं पावांगी उस लंबे मैसेज दे कारण। इस करके कोशिश करो कि थोड़ा जिहा छोटा मैसेज भेजो। खैर अगला मैसेज मैं पढ़ांगी इस सोहणे जे ट्रैक तो बाद। तुसी किते नहीं जाना, तुसी बने रहना मेरे नाल। प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

तू चाहे मिल हमसे हर बार यूं ही निगाहें चुरा कर, तू चाहे मिल हमसे हर बार यूं ही निगाहें चुरा कर, पर तेरा महफिल में हमारा जिक्र करना सब कुछ बयां कर देता है। बहुत सोचते हैं कि दूर रहें तुमसे, बहुत सोचते हैं कि दूर रहें तुमसे, पर ये दिल हर फैसले को मना कर देता है। हम जानते हैं कि तू नसीब में नहीं है मेरे, हम जानते हैं कि तू नसीब में नहीं है मेरे, पर फिर भी ये मन तुझे खुश रहने की दुआ देता है। एक खूबसूरत जिहा मैसेज जड़ा है भेजा गगनप्रीत कौर ने टांडा तो, बहुत बहुत शुक्रिया गगन इन्ना सोहना मैसेज भेजन वास्ते। तो अगला मैसेज एक होर बहुत सोहना जिहा मैसेज आया है जी, मैसेज है प्यार ता ओ है जो दिल तो हुंदा, प्यार ता ओ है जो दिल तो हुंदा, इस विच कोई हिसाब नहीं हुंदा, जिथे सच्ची लगन लग जावे उथे कोई सवाल जवाब नहीं हुंदा।

मैसेज आया जी, बहुत सोना जहा मैसेज। तेरी बेवफाई ने मुझे खामोश कर दिया, तेरी बेवफाई ने मुझे खामोश कर दिया, दिल के हर अरमान को मदहोश कर दिया। जिसे अपना खुदा समझ बैठे थे हम, उसी ने हमें तन्हा छोड़ दिया। कभी लौट कर आओ तो ये देखना, एक शख्स आज भी अधूरा है। जिसे तुमने बेवफाई में खो दिया, वो आज भी सिर्फ तुम्हारा है। ये मैसेज है जी सोनू मलेरकोटला तो। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, प्रोग्राम दे विच तुसी मैसेज भेजिया अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत सोहना जहा मैसेज आया माँ वास्ते। मेरे हंजू देख होके भर दिए माँ मेरी, मैनू लगदा रब दा दूजा रूपे माँ मेरी, मैनू प्यार बड़ा कर दिए माँ मेरी। किवें दा रेहा दिन, की होया मेरे नाल, हर रोज़ चेहरा मेरा पढ़ दिए।

102.7 एफएम रेनबो ते दिलाज शायर है दा सफर खात्मे वल जा रहा है फटाफट तो। जी हाँ, प्रोग्राम दा ये सेगमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ते ठीक 3 बजे असी मिलांगे साडे एफएम दिल्ली तो रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम दे विच ते देखांगे कि अज साडे वास्ते की खास है। पर फिलहाल प्रोग्राम नू अग्गे लैके चलदे हां ते देखदे हां कि अगला मैसेज किहदा आया है। मैसेज है जी अगला सुभाष चंद्र वत्स गिद्दड़बाहा तो। हर चेहरे पर एक कहानी होती है, हर चेहरे पर एक कहानी होती है, दिल पर कोई चोट पुरानी होती है। हंसने वाले लोग कभी जब रोते हैं, हंसने वाले लोग कभी जब रोते हैं, दुनिया वालों को हैरानी होती है। मैसेज प्रोग्राम दे विच इन्ना खूबसूरत जिहा भेजन लई बहुत बहुत शुक्रिया। ते अगला मैसेज है जी उदय चंद्र जी दा। अज कह रहे ने जी, मैं बोलदा सां ओह सुणदी सी, मैं बोलदा सां ओह सुणदी सी, ते विच कदे ना बोली सी, ओह बोलदी सी मैं सुणदा सां, मेरी जीबा गूंगी बोली सी। हुण दोवें ही असी बोलदे हाँ ते सुणदा कुल महला ए, कोई कहिंदा ए झल्लीए ते कोई कहिंदा ए झल्ला ए। जी बहुत तुसीं वैसे एक्चुअल गल दे विच मतलब सच्चाई तो है ही है, क्योंकि कुछ टाइम बाद हुंदा तो इदां ही है कि पहला तो तुसीं चुप सीगे ते फिर मैं भी चुप सीगी, तो फिर जदों असीं बोलने हाँ तो फिर सारे महल्ले दे विच असीं सुणांदे हाँ जी, सारा महला सुणदा है। बहुत वधिया मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजन वास्ते। तो अगला एक मैसेज है, मेरे सबर

आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर में आज का अंक फिर विशेष जैसे हर बार होता है और उम्मीद है हमारे सारे श्रोता हमारे साथ अब तक जुड़ गए होंगे। तो आप सब आ गए हैं, हमें उम्मीद है। नहीं आए हैं तो फटाफट आ जाइए क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे विशेष विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर एस के रसानिया। आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: धन्यवाद।

0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार
1: जी। और आज का जो हमारा विषय है, हम आपको बता दें, बहुत खास विषय इसलिए क्योंकि आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, तो आज का हमारा रेडियो डॉक्टर भी केंद्रित होगा डेंगू पर, स्पेशल ऑन नेशनल डेंगू डे। तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारे श्रोता जानते तो हैं, मच्छरों से जनित ये बीमारी होती है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी जिज्ञासा भी आपके मन में जरूर होगी कि अगर ये हो जाती है तो किस तरह से, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में और जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, बताएं हमें कि ये डेंगू दिवस का जो अवेयरनेस हम करते हैं इस दिन, ये क्यों आवश्यक है?
0: शालिनी जी, जैसा आपने बताया कि प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे, इसलिए क्योंकि ये जो मौसम है, इस समय जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के बाद में बरसात, बरसात के बाद में ये डेंगू से रिलेटेड सब बीमारियां काफी कॉमन होती हैं, तो लोगों को इसके विषय में जागरूक करना, लोगों को इसके बारे में बताना कि डेंगू किस तरह फैलता है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानकारी होगी तभी हम इससे बचाव अपना कर पाएंगे।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इसलिए इसको लोगों को उसके बारे में जागृत करना, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू करूं, शुरू तो हो चुका है लेकिन आगे बढ़ूं, मैं ये जानना चाहूंगी इसको डेंगू बोलते हैं कि डेंगी बोलते हैं, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में मैं गलत ना बोलती रहूं।
0: वही है कि हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो, बात है कि डेंगी और डेंगी एक ही चीज है, डेंगू बोलो या डेंगी बोलो,
1: गलत नहीं है, दोनों
0: गलत कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप उसको बोलेंगे तो डेंगी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में डेंगू है तो डेंगू या डेंगू, बात एक ही है।
1: चलिए, तो डेंगू डेंगी दोनों नामों से आप इसको जानते हैं, लेकिन प्रश्न वही है। अगर आप डेंगू या डेंगी से संबंधित कोई भी प्रश्न डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं तो हमारे साथ सीधे जुड़िए। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, जीवन चलने का नाम है, चलते ही रहना है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी तूफान से डरता नहीं है, लेकिन अगर हमें जीवन को खुशी से जीना है तो हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर ही हर खुशी को, हर जो जीवन की सुख को अच्छे से जी सकता है, और इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए आता है, आपको स्वस्थ रखने के लिए। आज हम डेंगू विषय पर बात कर रहे हैं, तो और हमारे साथ डॉक्टर एस के रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, पहले इनका प्रश्न सुन लेते हैं। हेलो।
1: हाँ, शालिनी मैम को शालिनता से ही नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब को भी प्रणाम।
2: नमस्कार।
1: मैं राजेंद्र

0: पे बोल रहा हूँ, करमपुरा से सर।
1: जी अपना प्रश्न करें आप।
0: यहाँ करमपुरा बिल्कुल नियरेस्ट पंजाबी बाग के पास है, गंदा नाला भी बहता है, यहाँ मच्छर बहुत ही ज्यादा होते, एक तरीके से कह लो कुंभ का मेला मच्छरों का लगा रहता है। जी एक तो मैंने सुना है भैया पहाड़गंज में पंचकुला रोड है वहाँ तो मच्छर होते ही नहीं, और उत्तम नगर में बिल्कुल मच्छर नहीं होते, और मैंने कहीं किताबों में पढ़ा है कि फ्रांस वाले तो मच्छर बला क्या है इसकी डेफिनेशन से ही वाकिफ नहीं है, तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या होती है तो हिंदुस्तान में इतने मच्छर होते हैं, और इसका कोई घरेलू उपाय बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी, खासतौर से जो डेंगू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: राजेंद्र जी आपका प्रश्न बड़ा पेक्यूलियर है, पेक्यूलियर इन द सेंस आपने कहा कि मेरे इलाके में तो मच्छर बहुत हैं, और किसी दूसरे एक इलाके के दिल्ली का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा वहां के लोगों को मच्छर देखे भी नहीं उन्होंने, और फिर तीसरा आपने कहा फ्रांस में उन मच्छर होते क्या उनको मालूम भी नहीं है। ये प्रश्न अपने आप में ही आपके प्रश्न जो है उत्तर है इसका, वो इसलिए क्योंकि देखिए जो कहीं जगह ऐसी है जहां पर कि ये जितने भी मच्छर हैं बेसिकली पैदा हो रहे हैं जहां हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उसके हिसाब से, अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा है, जहां पर कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा हो रहा है, जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा या जा कहीं पानी स्टेग्नेशन होगा तो वहां पर मच्छर पैदा होंगे, क्योंकि मच्छर जो है पानी में पैदा होते हैं, तो जहां भी कहीं मच्छर पैदा होने के लक्षण या कारण मौजूद होंगे तो वहां मच्छर होगा, और जहां यदि जनता भी जागरूक होगी, अगर आसपास कहीं आपके मच्छर अगर कहीं पैदा होते देखें, अगर आप उन्हें खुद ही उस जगह को खत्म कर दें तो वहां मच्छर नहीं होंगे, ठीक है, और कहीं जनता अगर जागरूक होगी ये देखने के लिए किस तरह मच्छरों का अपने आप हम समाप्त कर सकें, या हम सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपने आसपास के मच्छरों को समाप्त करा सकें, तो यही वजह है कि कुछ इलाकों में मच्छरों की बहुत ज्यादा तादाद है, कुछ जगह बहुत कम है और कुछ जगह नाके बराबर है।
1: जी, जी। और एक और प्रश्न डॉक्टर साहब इन्होंने किया था कि कोई घरेलू उपाय है क्या इसको ठीक करने का।
2: देखिए मच्छर अगर पैदा हो रहे हैं कहीं भी तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का, स्पेशली जो डेंगी मच्छर है, डेंगी जो हम बोलते हैं एडीज मॉस्किटो, डेंगी जो होता है एडीज मॉस्किटो के कारण होता है, और एडीज मॉस्किटो जो पैदा होता है हमारे घर और घर के आसपास के वातावरण में पैदा होता है, जहां भी कहीं अगर पानी इकट्ठा होगा किसी भी जगह, अगर सिर्फ एक चम्मच पानी भी यदि कहीं अगर कहीं इकट्ठा है उसमें अगर बरसात का पानी है, कहीं कोई पानी अगर इकट्ठा है तो बरसात या बरसात के दौरान में उस पानी में मच्छर पैदा हो जाएगा, तो कहीं भी अगर आपके अगर घर में कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर आपको लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके घर के आसपास कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं तो देखिए कहाँ पैदा हो रहे हैं, जहां पे अगर पैदा हो रहे हैं तो उस जगह को, उस जगह जहां पानी स्टेग्नेशन अगर कहीं हो रहा है, पानी अगर इकट्ठा है कहीं भी है, तो उस जगह को आप सूखा कर दें।
1: जी, तो इसका उपाय यही है कि हम लोग मच्छरों को खत्म कर
2: बस। जी, जी जी,
1: और मच्छर होते हैं पानी जमाव पे।
2: जी, जी,
1: तो
2: जी,
1: पानी कहीं भी जमा हो तो वहां पर हम कोशिश करें कि ऐसा
2: सफाई करें। स्पेशली ये जो बरसात का समय है, बरसात का समय तो मच्छर पैदा होने के लिए बहुत ही मतलब फेवरेबल एटमोसफेयर है मच्छर पैदा होने के लिए, क्यों, क्योंकि उनको जो तापमान चाहिए, जो आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में चाहिए, वो सब बरसात में उपलब्ध होती है मच्छरों के लिए, तो वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें मच्छर बड़े आराम से पैदा होते हैं। तो ये आप देखें कि आप घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आसपास कहीं भी, आपके घर पे अगर छत पे चले जाए, कहीं अगर जैसे कहीं अगर बाहर कहीं खुले में जा रहे हैं, कहीं कोई टूटा हुआ कप है, टूटा हुआ कोई गमला पड़ा हुआ है, अगर उसमें कहीं जरा सा ही पानी इकट्ठा, आप देखेंगे उसके अंदर पानी में बरसात या बरसात के टाइम में बाद में उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे लार्वा उसमें पैदा होंगे, तो यदि आपको कहीं भी ऐसा कोई जगह दिखती है जहां पानी जरा सा भी इकट्ठा है, इवन जो आपके पेड़ हैं, पेड़ के अंदर कहीं खोक बनी हुई है, कहीं पानी या इकट्ठा हो सकता है उसके अंदर, या कहीं बाहर कोई टूटा हुआ जूता, टायर, फटा हुआ टायर, कुछ भी, इवन घर के अंदर अगर आप देखें, घर के अंदर कहीं मनी प्लांट आपने लगा रखा है जहां आपकी पानी, आप जिसमें पानी आप इकट्ठा करते हैं, और एक और बड़ी कॉमन चीज है जहां पर मच्छर पैदा होते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आजकल आपके फ्रिज जो आते हैं, फ्रिज के पीछे की जो ट्रे होती है जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज जिसे आप बोलते हैं, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, पीछे उसके कंप्रेसर के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक बड़ा ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर है मच्छर पैदा होने के लिए, जो हमें बोलते हैं ना कि जो आपके घर के कूलर है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, आप यदि फ्रिज के पीछे की ट्रे को निकाल के बाहर देखें, उसके अंदर देखेंगे तो आपको उसमें मच्छर के लार्वा नजर आ सकते हैं।
1: अच्छा, तो उसकी भी सफाई करना,
2: तो उसकी रेगुलर सफाई, हफ्ते में रेगुलरली उसकी भी सफाई करें तो सारा पानी उसमें हटाते रहें, उसमें ये चीज बहुत जरूरी, ध्यान रखिए।
1: जी, जी, बहुत जी, काम की बात है। डॉक्टर साहब हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो,
3: सबको पहले मेरा नमस्कार आपको।
1: जी नमस्कार आपको।
3: मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार
1: जी,
3: और हमारा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि जो दिन वाला मच्छर

0: काटने से डेंगू होता है या रात वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है?
1: जी
2: राजेश जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया. देखिए राजेश जी, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेंगू मॉस्किटो है इसकी खास चीज वह है जो दिन में ये मच्छर काटते हैं, तो डे बाइटर बोलते हैं. डे बाइटर इन द सेंस कि जिस वक्त ये दिन होता है दिन के समय मच्छर काटता है, रात के समय आराम करता है. और इसीलिए अगर आप देखें डेंगू वाला मच्छर या मलेरिया वाला मच्छर जो है, उन दोनों में कौन सा ज्यादा खतरनाक है, वो दिन का मच्छर खतरनाक है. डेंगू मच्छर ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि दिन में काटता है, दिन में आप जो है कभी मच्छरदानी लगा के बाहर नहीं घूमते हैं. दूसरा, बरसात या रेनी सीजन के दौरान में आपको ह्यूमिडिटी बहुत होती है, आप पूरी बाजू के कपड़े पहनते नहीं, आप हाफ शर्ट या हाफ पैंट इस तरह के उसमें घूमते हैं, तो जितने भी आपके शरीर के एक्सपोज्ड पार्ट हैं तो वहां पर ये मच्छर आराम से काट दो. दूसरा, ये घर के अंदर अंधेरे में रहता है ये, तो कहीं भी आप अंधेरे में कोने में कहीं अगर बैठे होंगे तो वहां पर ये मच्छर काटता है. और दूसरा, एक और इस मच्छर की खासियत ये है कि जब आप दिन में मच्छर काटता है इसको, तो जो काटता है तो उसका थोड़ा पेनफुल होता है, इसका बाइट जो होता है, तो जैसे मच्छर काटेगा आप उसको उड़ा देंगे. तो इसका पेट एक बार के काटने से इसका पेट नहीं भरता, एक बार के व्यक्ति का खून चूस के इसका पेट नहीं भरता. जैसे रात में अगर, जैसे जो रात वाले के मच्छर होते हैं वो किसी मच्छर, अब व्यक्ति सो रहा है, सोते समय मच्छर काट रहा है, काटने का तो पूरा एक तृप्त होकर वो अपना उसका हट जाता है मच्छर, रात वाला जो मच्छर होता है. मगर जो दिन वाला मच्छर होता है कम से कम 15-20 लोगों काटने के बाद में उसका पेट भरता है,
1: मतलब वो फैलाता जाता
2: तो
1: है,
2: वो इन्फेक्शन फैलाता है. इसलिए डेंगू का कभी भी आउटब्रेक होता है तो इसलिए वो काफी लार्ज स्केल पर होता है. इसलिए जो डे बाइटर मॉस्किटो, ये डेंगू मॉस्किटो, इसलिए थोड़ा ज्यादा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खतरनाक मानते हैं हम लोग.
1: जी, और आपने बताया कि ये बहुत तेजी से फैलता है, अगर
2: इसीलिए
1: आउटब्रेक की तरह होता है, इसलिए अवेयरनेस की जरूरत है.
2: इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी जरूरी है कि दिन के टाइम में अपने शरीर को पूरा ढके रखें, ढके इन द सेंस कि पूरी बाजू के कपड़े पहने, और हो सके तो रिपेलेंट क्रीम वगैरह, जो भी क्रीम वगैरह होती है जैसे मच्छर वाली क्रीम होती है वो लगाएं. यदि बच्चे अगर दिन में सोते हैं तो उसको दिन में भी मॉस्किटो नेट के अंदर मच्छरदानी में बच्चों को सुलाएं, ये बहुत जरूरी है.
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कुछ तो बताया कि ये सुबह काटता है, दिन में काटता है, इसको कुछ पहचान भी सकते हैं क्या देख के?
2: हाँ, ये बहुत जरूरी. इसको डेंगू मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं. एक चीज खास ये है कि एक तो ये जो तीन मच्छर अगर आप देखें
3: कंट्रोल में रहे, ये जाना चाहते हैं.
2: राजा जी नमस्कार. एक तो एक चीज ये तो मुझे मालूम पड़ेगा कि शालिनी जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि का मुझे, क्योंकि मैं भी रेगुलरली ये प्रोग्राम सुनता रहता हूं और उसमें मुझे मालूम पड़ता है शालिनी जी वाकई काफी प्रसिद्ध हैं, लोगों में इनका काफी पहुंच है.
1: थैंक यू सर.
2: और दूसरा, आपने एक प्रश्न पूछा कि ये जो डेंगू के बारे में हो जाए तो कैसे इसको क्या करें, तो पहले तो मैं इस बारे में राजा जी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि डेंगू के लक्षण क्या, थोड़ा ये जरूरी जानना जरूरी है. मेरे ख्याल से अधिकतर लोग जानते होंगे डेंगू के लक्षण क्या है, कि एक तो बहुत तेज बुखार आएगा और साथ में सर के आगे वाले हिस्से में काफी दर्द होगा. और दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज जो डेंगू के फीवर में खास होता है कि जब आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, आंखों को घुमाने पर आपको आंखों के पीछे दर्द महसूस होगा, इसको बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन. ये बड़ा पिक्यूलियर चीज होती है डेंगू वाले उसमें फीवर में. तो ये जब कभी स्पेशली जब आंख वगैरह घुमाएंगे तो उसमें आपको दर्द का एहसास थोड़ा ज्यादा होगा. ये बड़ी कॉमन और पिक्यूलर फीचर है. और साथ साथ में इसके पूरे शरीर में, मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत दर्द होगा, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं. और धीरे धीरे इसमें फिर आपका स्वाद भी थोड़ा चला जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, ये सब चीजें इसकी काफी चीज होती हैं. धीरे धीरे इसमें जब यदि यूजली ये 5-7 दिन तक ये अवस्था रहती है. यदि ये फीवर अगर आप इसको किस तरह कंट्रोल कर लेते हैं और फीवर इसको आगे बढ़ने देते हैं तो उसके बाद में यदि सही हो जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि फिर लगातार उल्टी आना, उल्टी के साथ में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है खून में, खून के साथ मुंह से खून की उल्टी भी आ सकती है, मुंह से या नाक से भी खून आ सकता है, जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, वहां से भी खून आ सकता है. शरीर के ऊपर थोड़ा रैशेज आ जाते हैं एक स्टेज के बाद में, शरीर पे जैसे खसरे के जैसे रैशेज होते हैं उस तरह के रैशेज शरीर के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा आ सकते हैं, और बड़ी बेचैनी रहती है. और जब वो स्टेज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वो लक्षण के शरीर में कहीं ना कहीं हेमरेज हो रहा है. तो उसको पहली स्टेज होती है डेंगू फीवर की, दूसरी स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर की, DHF बोलते हैं इसे हम. और यदि वो स्टेज अगर जो अगर उस समय अगर पेशेंट को अगर थोड़ा सावधानी ना बरते तो वही धीरे धीरे वो शॉक वाली स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें कि शरीर में से शॉक के सारे फीचर्स होते हैं, आपकी पल्स काफी कम हो जाती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ड्राई मुंह, आपका मुंह सूख जाता है, और ये सब चीजें लक्षण पैदा होते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम उसे हम बोलते हैं. तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं. तो अपने आप को ध्यान रखें कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है, ये बहुत जरूरी है कि ये थोड़ा जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए.
1: जी, ये हमें आप

0: काफी विस्तार से डॉक्टर साहब लक्षण बताए, लेकिन कुछ लक्षण इसमें मैं जब सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे लक्षण चिकनगुनिया में भी होते हैं, जो आंखों में दर्द होना और हड्डी या पसलियों में दर्द होना। तो मच्छरों से फैलने वाली और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया, इनके
1: अच्छा,
0: बारे में
1: ये आपने शालिनी जी आपने अच्छी चीज बताई, जो यही जो लक्षण होते हैं ये उसमें भी होते हैं चिकनगुनिया, मगर चिकनगुनिया बस एक चीज है, चिकनगुनिया हड्डी और जोड़ों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि मतलब मरीज को उसमें उठा भी नहीं जाता है। तो वो जो बिल्कुल हड्डी जैसे तोड़ना, जैसे बोलते हैं हड्डी तोड़, वाकई में हड्डी तोड़ टाइप की जो स्टेज आ जाती है, वो चिकनगुनिया में काफी कॉमन होती है।
0: मलेरिया में
1: मलेरिया अच्छा आपने बोला, दूसरा प्रश्न था आपका कि मच्छरों से पैदा होने वाली और कौन कौन सी बीमारी
0: है।
1: तो एक तो डेंगी वाला मच्छर होता है एडीज मस्किटो, उससे आपकी मेन तो दो बीमारी हो गई आपकी,
0: डेंगू
1: हो गया और चिकनगुनिया हो गया, दो चीज हो गई। अब बाकी जो मलेरिया वगैरह है वो आपका एनोफिलीज से मॉस्किटो से मलेरिया भी होता है, फिर कुछ वेस्ट नाइल फीवर, कई सारी और बीमारी जो दूसरे हमारे यहाँ पर होती है, फाइलेरिया है, ये सब चीजें, ये बीमारी भी होती है मच्छरों से पैदा होने वाली।
0: जी तो इनके बारे में हम किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास डेंगू के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पहले और फिर आएंगे।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और मैंने ये देखा कि डॉक्टर साहब तो गाने में खो गए थे। नीला आसमान सो गया और डॉक्टर साहब खो गए।
2: बहुत ही प्रिय गीत थे।
1: और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एस के रसानिया, बहुत बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बहुत गाने और शायद आपकी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने सुनी हैं, और आज उम्मीद है कि मैं यहाँ पर लाइव भी कुछ आपसे गवा पाऊंगी अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिएगा, चलते चलते हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। और ये सारे जो आज गीत बज रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो डॉक्टर साहब के पसंद के हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। चाणक्य चौक गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी लिख रहे हैं कि डेंगू बुखार तेजी से चढ़ता है फिर उतरता है।

0: है और ये सिलसिला कितने दिनों तक रहता है प्लीज बताएं। डेंगू कितने प्रकार का होता है, क्या हम डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं, ये सही रहेगा कि नहीं प्लीज बताएं।
1: शालिनी जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें कुछ प्रश्न का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। डेंगू कितने प्रकार का होता है, अगर शुरुआती स्टेज में उसको बोलते हैं डेंगू फीवर, जिसको हम बोलते हैं साधारण जो वायरल फीवर की तरह से, जिसमें पूरे शरीर में पूरा फीवर होना, बुखार होना, हड्डियों में दर्द, जी मिचलाना और पूरे जोड़ों में दर्द, ये डेंगू फीवर। और यदि वो डेंगू फीवर का थोड़ा और अग्रणी रूप हो जाए तो डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि काफी कुछ चकत्ते शरीर में पड़ जाना और धीरे धीरे, और फिर उसका भी शॉक सिंड्रोम, वो थर्ड स्टेज होती है, वो मैंने आपको पिछले समय बता दिया। फिर आपने बोला कि जो क्या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि कभी भी यदि आपको लग रहा है वायरल फीवर है, आपको लग रहा है कि डेंगू फीवर हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा कुछ एक चीजें आवश्यक है कि कभी, क्योंकि बुखार काफी तेज होता है, तो बुखार को कम करने के लिए अपनी कोल्ड स्पॉन्जिंग से बोलते हैं कि अपने माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखना, ये शरीर को थोड़ा ठंडे पानी की पट्टियां रखना, ये सब चीजें जरूरी हैं। और यदि बुखार हो रहा है तो दिन में पैरासिटामोल, सिर्फ जो बुखार उतारने के लिए आप ले सकते हैं, दिन में तीन चार गोलियां ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि उसमें, मतलब उद्देश्य यह है कि बुखार ज्यादा आपके दो दिन तीन दिन से ज्यादा ना रहे, तो सिर्फ पैरासिटामोल गोली आप ले सकते हैं, प्लस पानी लगातार लेते रहें, खाना कम ना करें, ये चीजें, वरना तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मगर यदि आपको लग रहा है कि आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, प्लस आपके शरीर में कहीं चकत्ते पड़ने शुरू हो गए हैं, या आपको खून की उल्टी या लगातार कुछ उल्टी आ रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मितली बहुत ज्यादा, नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, सीने में कहीं आपको लग रहा है थोड़ा जकड़न टाइप की महसूस हो रहा है, मुंह सूख रहा है बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हो रही हैं, तो तब आपको डॉक्टरी सलाह तुरंत लेनी चाहिए। और तब यूजुअली, अच्छा इसमें एक और चीज है कि डेंगू फीवर में जब फीवर नॉर्मल आ जाता है तो उसके बाद में सेकंड पीक शुरू होता है फीवर का, वो थोड़ा एक थोड़ा डेंजर सिग्नल होता है, क्योंकि वो जो सेकंड पीक जो शुरू हुआ उसमें कई दफे डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले फीचर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए डेंगू फीवर कम होने के बाद भी कुछ दिन थोड़ा सावधानी बरतें, ये थोड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अगर तीन चार दिन फीवर का, अगर फीवर रुक गया और अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, मगर यदि फिर दोबारा से यदि टेम्परेचर बढ़ता है, या आपको धड़कनें तेज होने लगती हैं, या आपको मुंह सूख रहा है, कहीं वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, या कहीं मुंह से कहीं खून आने लगे, या मसलों में से कहीं खून आने लगे, नाक में से कहीं खून आने लगे, तो ये थोड़ा लक्षण है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
0: जी, और डॉक्टर साहब ऐसे भी सुना है कि इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है।
1: देखिए, आजकल वैसे जनता बहुत जागरूक हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें यह कि जरा सा उनको लगता है कि उनको डाउट है तो खुद ही अपने आप जाके लैब में टेस्ट करा लेते हैं। प्लेटलेट काउंट उनका पहली चीज होती है, प्लेटलेट काउंट देखना, उनको लगता है कि अरे यूजुअली 1 लाख से ऊपर यदि प्लेटलेट है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मल है वो, ठीक है। मगर 1 लाख से अगर नीचे होना शुरू होता है तो उन लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मगर इसमें भी है कि यदि आपके प्लेटलेट अगर काउंट कम हो रहे हैं, 20,000 या उससे नीचे भी जा रहे हैं, तो डॉक्टर सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जाएं। तो डॉक्टर अगर चाहेंगे तो उसमें यदि अगर शरीर में कहीं खून की कमी हो रही है या प्लेटलेट और भी कम हो रहे हैं, तो डॉक्टरी सलाह पर, डॉक्टर अपने आप उसको देख के, फिर मरीज को देख के डॉक्टर अपने आप इलाज करेंगे अस्पताल के अंदर, अपने आप से कोई इलाज ना करें उसके लिए, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है।
0: तो मुझे जहां तक समझ में आई डॉक्टर साहब आपकी बात कि बुखार को कम करने के लिए आप दवाई लेते रहें, पर जरा सा भी आपको लगता है कि 4-5 दिन से ऊपर हो गया है तो डॉक्टर के पास,
1: तो डॉक्टर जरूर पास जरूर जाएं।
0: जी, हमारे पास ये एक प्रश्न आया है, नाम नहीं लिखा है उन्होंने अपने श्रोता ने, लेकिन लिखा है कि किस एज ग्रुप में डेंगू ज्यादा होता है, ऐसा कोई एज ग्रुप होता है क्या डॉक्टर साहब?
1: सभी इस एज ग्रुप में ये होता है, कोई उसमें सभी एज ग्रुप पर, दोनों में, मर्द और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है डेंगू, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। मगर हाँ, बच्चों में थोड़ा सा ये इसका थोड़ा विकरालता थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सीवियरिटी इसकी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे थोड़ा घर के अंदर ज्यादा रहेंगे तो उसमें ज्यादा उनको होता है, तो उसमें थोड़ा, उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है उनके अंदर थोड़ा। जी,
0: हमारे श्रोता है विशाल मल्होत्रा सिरसा हरियाणा से, इन्होंने लिखा है कि घर के अंदर मच्छर को मारने के लिए अगर हम स्प्रे यूज करते हैं तो ये उपयुक्त होगा?
1: देखिए, बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें मगर एक चीज कहना चाहूंगा, आप यदि घर के अंदर जो भी स्प्रे करेंगे तो वो एडल्ट मॉस्किटो जो व्यस्क मच्छर है उसको खत्म करेगा, मगर रोग की जड़ जो है आप उससे देखें कि

0: मच्छर कहाँ पैदा हो रहे हैं, जब तक आप उस रोग की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आज तो एडल्ट मॉस्किटो मार दिया स्प्रे करके, मगर कल को जहां मच्छर पैदा हो रहा है, जिस जगह पैदा हो रहा है, अगर आपने वो सोर्स खत्म नहीं किया, वो फिर दोबारा मच्छर वहां पैदा होकर आएगा। तो आप घर और घर के आसपास जरा देखें कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, आप उस सोर्स को खत्म करें। इसको हम बोलते हैं सोर्स रिडक्शन, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आप रोग की जड़ों को खत्म करो ना, कि कहां मच्छर पैदा हो रहे हैं वो देखो, वो जगह पहले आप देखो कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं,
1: जी।
0: उस जगह को खत्म करो।
1: नेहा लिख रही है मुंबई से, डॉक्टर साहब कि डेंगू पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ डेंगू पेशेंट्स।
0: सब
1: थोड़ा
0: कुछ
1: तो आपने बताया था पानी का इनटेक और
0: देखो, एक चीज खासतौर ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी बुखार ज्यादा हो, कभी ये जरूरी नहीं कि इसी डेंगू फीवर में, कभी भी यदि फीवर ज्यादा होता है तो शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि जब फीवर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा एक मुख्य उद्देश्य होगा कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी की प्रचुर मात्रा अपने शरीर में बनाए रखें। तो पहली चीज तो यह है कि नियमित रूप से पानी और या तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, प्लस जो हृष्टपुष्ट बनाने वाली चीजें हैं, जैसे जो घर की चीजें हैं, जैसे मेरे हमें याद है हमारे जो बचपन में डॉक्टर थे, तो फैमिली डॉक्टर थे, कुछ भी चीज हो बोलते खिचड़ी, दलिया, खिचड़ी, दूध, चाय, ये जरूर लेने। मतलब उनका कहना ये था कि कुछ ना कुछ खाते रहो मगर भूखे मत रहो। और खाने के लिए भी जरूरी नहीं कि आप बाजार की चीजें, घर की बनी हुई जो बिल्कुल सेहतमंद चीजें हैं वो सब लेते रहें। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कभी खाना कम नहीं करना है, और पीने के लिए तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें लगातार। जी
1: जी दिल्ली से परिधि लिख रही हैं कि क्या डेंगू होने की वजह से कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं? क्या ऐसा होता है कि एक बार डेंगू हो गया या बिगड़ गया उसका रूप, तो वो ता जिंदगी उससे कुछ होता रहे नुकसान?
0: परिधि जी, देखिए वैसे तो अभी वो विकराल रूप जो होता है, वो जो इस तरह का विकराल रूप जो होता है डेंगू का, वो थोड़ा देखने का इतना वो नहीं मिलता देखने का वो, क्योंकि यदि आप उसको समय पर डेंगू को कंट्रोल कर लें, क्योंकि कई दफे क्या होता है जो डेंगू के जो अगर एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उसमें शरीर में कहीं ना कहीं किसी अंग के अंदर कई दफे गैंग्रीन या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, कोई या कोई शरीर का कोई अंग थोड़ा वैसा हो सकता है, मगर वो एक स्टेज अगर आप सही तरह से अगर डेंगू के मरीज का इलाज हो रहा है तो उसमें वो सब चीजें नहीं होती हैं। मगर वैसे रूटीन में कोई ऐसा उसका ये नहीं कि आफ्टर लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं होते हैं।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न
0: जी
1: करने के लिए, उम्मीद है आपको प्रश्न के जवाब मिल गए। और हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर, हेलो
2: हेलो शालिन मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी, आर चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: प्रश्न करें सर।
2: डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी, तो क्या डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं? दूसरा, डेंगू का वो खत्म करने के लिए लोकल अथॉरिटीज स्प्रे करती हैं, तो वो उसका जो स्प्रे का जो धुआं होता है वो आम आदमी के लिए कितना हार्मफुल होता है?
0: बहुत अच्छा जी, जी आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, दोनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है कि नहीं है। देखिए, तीन देश हैं जहां पर कोविड की वैक्सीन ऑलरेडी लग रही है, मगर वो हमारा देश इसमें शामिल नहीं, मगर वहां पर वो अभी ट्रायल बेसिस में, हमारे देश में वैक्सीन में हम उम्मीद करते हैं कि 2026-27 तक शायद हम वैक्सीन,
1: मतलब
0: शायद उसको
1: कुछ देशों में डेंगू की
0: कुछ देशों में वैक्सीन
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: अभी मगर लग रही है, मगर वो काफी समय से उनके, मगर वो अभी इंडिया हिंदुस्तान में अभी अभी वो नहीं आई है। हमारे यहाँ कुछ ट्रायल चल रहा है, ट्रायल स्टेज में है, और उम्मीद है कि 2026-27 तक ये वैक्सीन शायद हमारे को उपलब्ध होगी। दूसरी चीज आपने बोली स्प्रे के बारे में, देखिए जो स्प्रे है जो हम जिसको फॉगिंग बोलते हैं, फॉगिंग जो असर करता है एडल्ट मॉस्किटो के ऊपर, जो वयस्क मच्छर होता है, जो उड़ता है मच्छर, उसके ऊपर असर करता है। उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि वो जो एडल्ट मॉस्किटो है उसको खत्म कर देता है, और एडल्ट मॉस्किटो खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट तो रहता है, मगर उसका एक नुकसान ये भी है कि उसमें फॉगिंग में डीजल या केरोसिन का इस्तेमाल होता है, तो कुछ ना कुछ जो सांस के मरीज होते हैं उनको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है वो। दूसरा एक और चीज है कि उसमें फॉगिंग में कई सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय कहीं हवा तेज ना चल रही हो। दूसरा, लोग अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि वो फॉग जो है या धुआं जो निकालते हैं वो घर के अंदर तक प्रवेश कर सके। लोग वह क्या करते हैं कि जब फॉगिंग होती है तो उस समय बल्कि और घर के अपने दरवाजे बंद कर देते हैं कि बाहर के मच्छर कहीं अंदर ना जाए, जबकि फॉगिंग में तो उद्देश्य होता है कि जितने मच्छर हैं सब पे उसका असर हो। तो ये थोड़ा जानकारी इसके लिए जरूरी है लोगों को, मगर फिर भी मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, सोर्स

0: दर्शन कि जहां ये मच्छर पैदा हो रहे हैं हमारा उद्देश्य उस तरफ होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक हमें प्रश्न आया है कि क्या ट्यूबलाइट, जैसे आपने कहा दिन में काटता है ये मच्छर, तो क्या ट्यूबलाइट की रोशनी डेंगू के मच्छर को काटने के लिए लाइट का काम करती है क्या? ये माना जाएगा कि लाइट है?
0: मैं इस बारे में अपने अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने मेडिकल कॉलेज में अपने अपने स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, तो उनको कई बार उनको जानकारी देने के लिए कि उनके घर में कौन से मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो वो जरा इकट्ठा करके लाओ, तो उनको मैं ये थोड़ा बताता था कैसे मच्छर इकट्ठा करने हैं। तो उनको बोलता था पूरे कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके एक मॉस्किटो मैट जलाओ, उसका धुआं करो और एक लाइट खुली छोड़ दो, तो सारे सारे मच्छर उस धुएं की तरफ आकर्षित होंगे, उस लाइट की तरफ आकर्षित होंगे, धीरे धीरे बेहोशों के नीचे गिर जाएंगे। अब वो उसमें इकट्ठे करके लो, अगले दिन उनको हैंड लेंस से आप आइडेंटिफाई करो। हम वो उनको सिखाते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉस्किटो है। तो ये जो प्रश्न है कि क्या वो ट्यूबलाइट की रोशनी वो मच्छरों को रोकने के लिए सही है कि नहीं है, देखिए जो भी कहीं भी कोई डार्क जगह होगी वो मच्छर वहां पर आराम करता है। रात के समय तो वो वैसे ही आराम करता है, दिन के समय वो काटता है, और दिन में भी जो अर्ली मॉर्निंग है सुबह का समय या शाम का समय, शाम से थोड़ा पहले या दिन में कभी भी वो काटेगा। तो कहीं रोशनी अगर थोड़ा अंधकार होगा तो वहां पर वो, जहां अगर आपका शरीर कहीं खुला होगा एक्सपोज पार्ट होगा उसमें वो काटेगा। ट्यूबलाइट की रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंधेरा कहीं भी है तो वो वहां पर रहेगा और काट जाएगा।
1: जी, तो हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं फोन लाइन के माध्यम से भी और मैसेज के माध्यम से भी। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर बता दूं गाना खासतौर पर डॉक्टर साहब को बेहद पसंद है, तो हम लोग भी सुन लेते हैं इस गीत को।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत डॉक्टर साहब, ये आपकी जो पसंद का हमने अभी सुना आशा जी की आवाज में, मन आनंदित हो गया, आनंद आनंद छायो, बिल्कुल। और अब हमारे श्रोता हमें और मैसेज और फोन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया कि इसको पूरी तरह से इस पर काबू पाने के लिए डेंगू पर हमें मच्छरों पर काबू पाना होगा, तो क्या ये जो वेक्टर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं और कैसे इसको फॉलो किया जाए, प्लीज बताएं।
1: हाँ शालिनी जी, मैं इसको संक्षेप में इसको ये थोड़ा चार हेडिंग्स में थोड़ा इसको कवर करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो सबसे जो भी डेंगू का मच्छर है, डेंगू से बचाव अगर आप कहें तो डेंगू से बचाव के चार विभिन्न तरीके हैं। सबसे पहला है आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करते हैं, पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। उसमें यह है क्योंकि बरसात और बरसात के बाद के मौसम में, जबकि वातावरण में ऑलरेडी आर्द्रता काफी ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है,

0: तो मुझे, मैं समझ सकता हूं उस टाइम में पूरे शरीर के वो ढके हुए कपड़े पहनना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, मगर कोशिश करें कि फुल स्लीव्स क्लोथ पहने, अपने शरीर को थोड़ा ढककर रखें, और अगर वो संभव नहीं है तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो होती हैं, जो आप लगाते हैं जिसमें मच्छर आपके ऊपर ना आए, वो क्रीम्स बाजार में उपलब्ध होती हैं, वो लगा सकते हैं। दिन में यदि सोते हैं तो दिन में बेड नेट्स वगैरह ये मच्छरदानी का प्रयोग करें, स्पेशली बच्चों के लिए। खासतौर से कमरे में, जिस कमरे में भी आप काम करते हैं या रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई मॉस्किटो रिपेलेंट जो आपके कॉइल्स वगैरह होती हैं या जो जो प्लगीज आते हैं वो इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है कि आप मच्छर, जहां आपको लग रहा है कि मच्छरों का पानी पानी बहुत इकट्ठा होता है, जहां पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा है, वहां कहीं ना कहीं लार्वा पैदा ना हो पाए, ताकि मच्छर वहां पे अंडे ना दे पाए, तो उसके लिए जरूरी है, जैसे आपको बताया भी गया हो, कि सप्ताह में एक बार अपने कूलर को ड्राई रखें। वो इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जो मॉस्किटो जो पैदा होता है उसका पूरा चक्र 7 दिन का होता है, अंडे से लेके उसके एडल्ट बने तक 7 दिन का समय होता है। तो हफ्ते में एक दिन अपने जो जहां पे पानी आपका इकट्ठा होता है उन बर्तनों को साफ करके रखें। एक और चीज है, इस मच्छरों के जो एडीज के जो अंडे होते हैं, वो अगर 1 साल तक भी अगर उसमें कहीं अगर चिपके रहे, 1 साल बाद यदि उनको पानी मिला तो फिर दोबारा वो पूरा मेच्योर हो सकते हैं। तो इसलिए उसके अंडे 1 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, डेंगू के जो अंडे होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि मच्छरों को जो जो आप जो वाटर कंटेनर है उनको आप सप्ताह में एक बार पूरा ड्राई करके साफ करके रखें। और अगर आपको लग रहा है जिनको आप इकट्ठा जिनको साफ करके नहीं रख सकते हैं, या जो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल कोई तालाब है या कोई ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा रहता है, तो वहां पर जो पानी के अंदर मॉस्किटो लार्विसाइडल ऑयल होता है या दवाई आती है एबेट वगैरह, उसमें वो डाल सकते हैं, वो सरकारी सिस्टम में उपलब्ध होती है। तो ये थोड़ा जरूरी है। या जैसे आप देखेंगे, जैसे इंडिया गेट है, इंडिया गेट के आसपास वाटर काफी सारे वो हैं, बोट क्लब वगैरह है, वहां पर गेम्बुशा फिश या गप्पी फिश उसमें डाल देते हैं, वो जो है लार्वा को खा जाती है। और तीसरा सोर्स रिडक्शन, कहीं भी जहां आपको, आप कहीं भी पार्क में जा रहे हैं, लग रहा है कहीं भी घूम रहे हैं, जहां के आपको लग रहा है कि आपके मच्छर पैदा हो सकता है, दिख रहा है कोई ऐसा बर्तन जिसपे कि इकट्ठा कुछ पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको खत्म करें, उसको पैर से लुड़का दें। जैसे हम अपने यहाँ, मैं जिस बड़े कॉलेज में हूँ लेडी हार्डिंग में, हम स्टूडेंट्स को जानकारी देते हैं कि जहां कहीं वो जब कभी राउंड लेते हैं, कहीं भी कोई लग रहा है कि कहीं पानी इकट्ठा दिख रहा है, किसी कोई पेप्सी कप पड़ा हुआ है, कोई कप पड़ा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा है, कोई ऐसी चीज पड़ी है उसमें लग रहा है पानी इकट्ठा, तो पैर से उसको उड़ाल दो, उसको क्रश कर दो, तो ताकि वो खत्म हो जाए। तो और सबसे बड़ी चीज, लोगों को जानकारी देना इस बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं इसमें वेक्टर कंट्रोल मेजर्स के लिए।
1: जी, हमारे एक श्रोता ऑनलाइन पर हैं, देखें क्या पूछना चाहते हैं। हेलो,
2: मैं बोल रहा हूँ किशन दिल्ली से।
1: जी, अपना प्रश्न करें।
2: मेरा प्रश्न ये है कि मच्छर जो बुजुर्ग लोगों को ज्यादा काटते हैं, छोटे
1: किसको ज्यादा काटते हैं जानना चाह रहे हैं, बच्चों को कि बुजुर्गों को? जी,
0: किशन जी,
2: वो कम काटते हैं, किशन जी, बच्चों को मैं देखता हूं ज्यादा काटते हैं।
0: किशन जी देखिए, ऐसा मच्छर ना तो उम्र देखता है, ना ये देखता है कि वो मर्द है या स्त्री है जिसको काट रहा है। वो मच्छर तो सिर्फ ये देखता है, अगर वो मनुष्य का खून पिएगा तो वो सिर्फ देखता है मनुष्य है कि नहीं, वो किसी का भी, इसको इसके लिए कोई डिमार्केशन नहीं कि बच्चों को ज्यादा काटता है। मगर हाँ, उसका विकराल रूप किसमें ज्यादा होता है वो थोड़ा देखने वाली बात है। तो इसलिए जरूरी यह है कि हर कोई अपने आप को उससे बचा के रखे, मच्छरों को काटने से बचाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया, विस्तार से बताया किस तरह से वेक्टर कंट्रोल मेजर्स हैं, मच्छरों को कैसे खत्म किया जा सकता है और किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से तरीकों से। ये भी बताएं कि अगर गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको अगर डेंगू हो जाता है तो कुछ खास सावधानियां लेनी होती
0: है। देखिए, गर्भवती महिला को थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है कि उनको, ये थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती हैं गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, क्योंकि ये जो डेंगू इन्फेक्शन है, स्पेशली जब कभी बच्चा डिलीवरी के टाइम में बच्चे से माँ से बच्चे में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ थोड़ा गर्भवती स्त्री को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी डेंगू के कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो दोनों पर, माँ पर और बच्चे पे, दोनों पे उसका इफेक्ट आता है। माँ को यदि गर्भवती स्त्री को होता है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे का डेवलपमेंट, जो इंट्रायूटराइन डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर उसका असर आता है। और डॉक्यूमेंटेड है कि कहीं ना कहीं उसका वो इन्फेक्शन बच्चे में भी, न्यूबॉर्न बेबी में भी उसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो खासतौर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा एक और चीज मैं थोड़ा बताना भूल गया, सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर में यदि कोई भी व्यक्ति जिसको भी इन्फेक्शन है, जिसको लग रहा है कि उसको डेंगू हो गया है, बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति को मच्छरदानी के अंदर रखें।

0: कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसको भी डेंगू हुआ है तो उससे अगर मच्छर काटेंगे तो वो कहीं ना कहीं मच्छर काट के दूसरों को फैलाएगा। तो जरूरी है कि उस व्यक्ति को तो कम, इसलिए हॉस्पिटल में जब भी कभी आउटब्रेक होता है हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड सेपरेट बनाते हैं जिसमें सभी मरीजों को मच्छरदानी में लिटाया जाता है। तो इसलिए उनका उनको एक तरफ इस तरह से आइसोलेट करना, इन द सेंस कि उनको मच्छरदानी में रखें ताकि वो दूसरों के लिए सोर्स ना बने, दूसरों
1: जी
0: को
1: जी
0: मच्छरों मच्छरों
1: क्योंकि
0: के जी
1: मच्छर अगर उन्हें काटेगा तो
0: जी
1: किसी और को फैला
0: और वो
1: सकता
0: सबको
1: है।
0: फैलाएगा। जी
1: जी अभी हमारे जो श्रोता इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे वो जानना चाह रहे थे कि बच्चों को ज्यादा काटता है कि बड़ों को कुछ ऐसा, वो आपने बताया ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है डॉक्टर साहब कि कोई कोई लोग ज्यादा प्रोन होते हैं उसकी जो परेशानी होती है उसको, डेंगू का जो एक स्टेज होती है शायद वो उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड एज के हैं या
0: नहीं,
1: जिनकी इम्यूनिटी
0: हाँ
1: कॉम्प्रोमाइज्ड
0: ये
1: है
0: जो
1: या
0: हाँ
1: तो
0: ये आपकी बात सही, जो स्पेशली जो जो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं जिनकी
1: जी जी
0: इम्यूनिटी जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है, बुजुर्ग लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों में तो ये सही बात है कि उनमें थोड़ा सा ये सब चीजें उनका किसी यही नहीं, कोई भी उनको बीमारी होगी तो उसका विकराल रूप उनके अंदर ज्यादा परिलक्षित होगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये तो थोड़ा सही है कि इस तरह के लोगों में थोड़ा सावधानी उनको ज्यादा बरतनी होती है। जी
1: जी अच्छा एक डॉक्टर साहब ये हमारे एक पास प्रश्न आया है, रंजन लाल जी लिख रहे हैं, फार्म हाउस में रहते हैं और उन्होंने लिखा है कि मैं दिल्ली के पास में एक फार्म हाउस में रहता हूँ, बारिश में बहुत बढ़ जाते हैं मच्छर यहाँ पर, तो मैं क्या करूँ? कुछ तो आपने बताया है लेकिन कुछ शॉर्ट में बताना चाहें तो, समय बहुत कम है तो हम
0: देखिए
1: जरा
0: रजन लाल
1: शॉर्ट
0: जी,
1: में बता देते
0: यही मैं
1: उनको।
0: शुरू से इस बात को बता रहा हूं कि मच्छर जो है बरसात और बरसात के मौसम बाद का मौसम, ये दोनों मौसम ऐसे हैं जिस समय क्योंकि टेम्परेचर उनको अच्छा खासा मिलेगा और ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मिलेगी उसमें तो पैदा हो गई होगा। तो मच्छर जहां बरसात, ये तो मच्छर ही मौसम बरसात का ही प्राणी है, बरसात या बरसात के बाद का प्राणी है, तो इसलिए तो जहां बरसात हो गई तो अगर आप फार्म हाउस आप बता रहे, फार्म हाउस में आप रहते हैं तो फार्म हाउस में तो आसपास कहीं भी अगर पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है फिर तो ये होगा।
1: तो बहुत सफाई रखनी है
0: जी
1: आपको और बारिश आने से पहले ही आप पूरा ऐसा इंतजाम कर लें कि बारिश का पानी जमा ना हो कहीं पे। डॉक्टर साहब हम जब बात कर रहे थे तो हम आपने अपनी बात में भी कहा कि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है इस मिशन में कि हम डेंगू मुक्त हों, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? हमारे बहुत सारे श्रोता आज सुन रहे हैं, आपसे प्रश्न भी कर रहे हैं, क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्या भागीदारी की उम्मीद करते हैं आप?
0: देखिए, एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हर चीज के लिए, हम किसी भी चीज के लिए सरकार की तरफ निगाह मारते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, मगर कहीं ना कहीं किसी भी समस्या के निपटान के लिए खासतौर से इस तरह की बीमारी जो होती हैं उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का सहयोग आइडेंटिफाई करने में कि क्या समस्या है, क्या उसके कारण है और उसमें वो क्या सहयोग दे सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब भी कभी बरसात के टाइम में उसके बाद में खुद जो सिविक एजेंसीज हैं, एमसीडी, एनडीएमसी, ये सब ऑलरेडी कहीं भी आपके यहाँ घर के आसपास कहीं कूलर में या कहीं मच्छर पैदा होते हैं तो आपके आसपास आ जाते हैं, आपको चालान काटना शुरू करते हैं क्योंकि वो एक लीगल ऑप्शन बचता है अगर किसी घर में अगर मच्छर पैदा होते हैं तो। मगर ये मौका आना ही क्यों चाहिए, ऐसा हो ही क्यों कि कोई चालान काटे आके आपके घर पर, हम क्यों नहीं स्वयं ही जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरा एक और चीज है इसमें, मैं बहुत समय पहले कहीं एक बाहर गया था इस डेंगू सिलसिले में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छा प्रयोग देखा, उन्होंने स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को, इवन दिल्ली में भी ये किया गया था प्रयोग, बच्चों को डेंगू कार्ड उनको दे दिया गया, कार्ड दे दिया गया उनको, अपने घर के आसपास के 50 घर जाके वो चेक करेंगे कहाँ कहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं और जिस किसी के घर में मच्छर है तो वो जानकारी अस्पताल देंगे उनको, अध्यापकों को आके देंगे और फिर वहां पे वो जो सिविक एजेंसी वहां आके एंटी मॉस्किटो मेजर्स करती थी। तो इस तरह से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल करना या गृहिणी को इस काम इस में शामिल करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महिला समिति बना के लोगों के घरों में जा जाकर देखें कहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं या कौन कौन कौन से ब्रीडिंग साइट्स हैं जहां मच्छर पैदा हो रहे हैं, ये सभी का सहयोग इसमें जरूरी है। लोगों को जानकारी, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि वो उनका क्या कर्तव्य है, वो कैसे इस समस्या को खत्म, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है कि यदि एक बार यदि आउटब्रेक हुआ, कभी भी ये एपिडेमिक फॉर्म में कभी हुआ, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल या प्राकृतिक तरीका ही है जबकि ये खत्म हो सकती है, यानी कि बरसात या जैसे मई या जून के जून जुलाई में शुरू होती है ये बीमारी, और अगर आउटब्रेक यदि हुआ तो फिर ये नवंबर दिसंबर तक पीक होता है, फिर दिसंबर के बाद जब मौसम बदलता है तभी अपने आप ही खत्म होती है। तो ये एक बार यदि आउटब्रेक हुआ तो ये अपने आप ही कंट्रोल होता है, उसमें फिर ज्यादा कंट्रोल करने का फिर स्कोप ज्यादा रहता नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए कि ये आउटब्रेक हुई ना, कभी भी डेंगू फैले ना,

0: ये सभी का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल, आपने
0: जी।
1: बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बोली कि सभी का सहयोग जरूरी है। हम अगर डेंगू मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे सारे श्रोताओं का और जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं उन तक भी ये मैसेज आप पहुंचा सकते हैं कि इस तरह की बात आपने सुनी है आकाशवाणी पर रेडियो डॉक्टर पर और ये बहुत जरूरी है। पर एक जिम्मेदारी और है डॉक्टर साहब मेरी, मैंने अभी श्रोताओं को प्रॉमिस किया था कि आप गाना सुनाएंगे तो वो जिम्मेदारी मुझे पूरी जरूर करनी है रेडियो डॉक्टर खत्म हो उससे पहले। तो आप प्लीज कुछ तो गुनगुना दीजिए, आप इतना अच्छा गाते हैं वही गाना हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता फिर पूरा भी सुनेंगे।
0: बड़ा आपने मुझे बड़े पेशोपेश में डाल दिया
1: नहीं आपको तो बहुत सारे गाने आते हैं। आप ये मन्ना डे वाला गाना आप बोल रहे थे कि आप मन्ना डे जी वाला सुनाएंगे,
0: अच्छा,
1: तो यही गाना सुने जीवन से लंबी जी।

0: सच है जीवन से लंबे हैं जीवन के रास्ते, और इस वादे के साथ कि हम कर फिर होंगे आपके साथ, धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर एस के रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली को, कि आप स्टूडियो में आए, आपने इतने सारे प्रश्नों का डॉक्टर साहब जवाब दिया हमारे श्रोताओं का। और आज हमने खासतौर पर प्रश्न, ये जो हमारा समय था राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर। और इसी तरह से जुड़ते रहिए रेनबो के साथ, जुड़ते रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ, और आप सुनते रहिए ये आपका कार्यक्रम। आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: हाँ जी हाँ जी,
1: आज शाम नू पार्टी रखो फिर सारे दोस्त आ गए।
0: बिल्कुल जी, क्या बात है। बिल्कुल, ये तो बंदा है।
1: हाँ बंदा जी, बिल्कुल बंदा। हाँ जी, असि तो मैडम पहले फंक्शन कराते होंगे सी।
0: अच्छा,
1: सारे लोग वगैरह बुलाते थे, चार पांच फंक्शन किए हैं साथ। अच्छा। उन्होंने बंदे थोड़े जे चले गए दुनिया तो।
0: अच्छा अच्छा,
1: साडा 25-30 बंदा ग्रुप सी, ते असी फंक्शन कराते सी सारे लोग, सब सारे असी जिन्ने भी बहुत दूर दूर पिंडो लोग बहुत आंदे सी लोग।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जलंधर सी फंक्शन कराते होंदे सी रेडियो रेडियो लिसन क्लब।
0: ठीक है, किन्ने साल हो गए सतीश जी तुहानू सुनदे आ रेडियो?
1: मैडम जदों मैं, मेरा ब्याह नहीं सी होया हले, 45 साल हो गए ब्याह नूं।
0: अच्छा,
1: फिर रात नूं मैं नींद नहीं सी आंदी हुंदी, ते मैं रेडियो दे गाने ला लैंदा ते सो जांदा सी। मैं नींद बहुत वधिया आंदी सी, सवेरे उठदा रेडियो चलदा चलदा हुंदा सी। दिनेश गरेवाल जी पेश करदे सी, कदी सुखी जी पेश करदे सी। कई वारी मैनूं याद है कि मैं फोन लगा के ते कदी मैं बाहर चाह कहन चला गया, वापस आया तो हैलो हैलो करदे पे सी। मैं कहा हां जी, कहंदे किथे चले गए सी? मैं कहा जी चाह कहन गया सी।
0: अच्छा,
1: उदों इन्ने लोग नहीं सी सुनदे जी, नॉन लोग फोन करदे सी ज्यादा। 45 साल हो गए जी फोन करदे आ।
0: और
1: कई बार घर भी झगड़ा हो गया वाइफ नाल, कहंदी है रेडियो रख लो या मेरी सोते ना, या मैनू रख लो या इनू रख लो।
0: अच्छा, ते तुसी क्या कि मैं दोनों ही रखनी है, हैं?
1: मैं
0: मेरा किसे बगैर गुजारा नहीं दोनों चो।
1: ते हुण उन ओ भी आदी हो गए जी, उन्हां नूं पता लग गया जी इन्हां नूं फोन लगाना ही लगाना।
0: ठीक है,
1: ते हुण ओ भी इत्थे ही है जी, ते रेडियो भी इत्थे ही है।
0: वाह जी वाह, वाह जी वाह, बिल्कुल जी, दोनों बगैर गुजारा नहीं हैगा। बहुत वधिया लग्या सुन के तुहाडियां कहानियां। अच्छा, गाना कहड़ा सुनोगे हुण तुसी?
1: गाना ला दो मैडम जी, बाकी प्रोग्राम मैं वधिया लगता जे मेरा फोन लग जाए।
0: वाह जी वाह, क्या बात।
1: तुसी आओ ते फटाफट आया करो, हफ्ते दो तीन वारी। अच्छा, मेहरबानी तुहाडी, शुक्रिया।
0: ठीक है जी, ठीक है।
1: गुरदास मान दा ला दो जी, मेरी रुस्ते ना झांजरा वाली चाहे सारा जग रुस जाए।
0: ठीक है जी, ठीक है, मैं गाना प्ले करन जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी कॉल करने लिए। ओके जी, थैंक यू। ते लो जी, सतीश जी की कॉल लग गई है, ते नाल नाल नवीं नवीं कहानियां मैनू भी सुनन मिल रही ने रेडियो दे नाल जुड़िया हुई। ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਊਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੇ ਗੀਤ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 0181 243 174 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।

हाँ जी, सुनिया सी गुरदास मान जी की आवाज़ दे विच एक आइकॉनिक सोंग, जड़ा कि सुन तो नहीं पाई मैं पूरा, क्योंकि देखो जी वक्त जड़ा है वो थोड़ा है, ते मैं चाहनी हाँ कि गलबात जड़ी है ना वो पूरी होवे। जी हाँ, क्योंकि अज तो जी बड़ा एक स्पेशल भी दिन हैगा है, क्योंकि असी अज अपने आकाशवाणी जलंधर के 78 साल पूरे किते ने। मैं चाह रही थी कि कॉल्स असी ज्यादा तो ज्यादा लईए, तो देखते हैं कि अगली कॉल कि लगी है। हैलो हैलो हैलो, मैनू लगता है कि कॉल जड़ी है ना उन्हां दी डिसकनैक्ट हो गई है, जड़े साढ़े कॉलर सीगे। हैलो, हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली उन्हां दी कॉल डिसकनैक्ट हो गई है, बट कोई गल नहीं, असी प्ले करांगे गीत ते नाले चलांगे प्रोग्राम वल अगे वधांगे, ते तुसी फटाफट तो 0-181-43-42-174 दे उत्ते कॉल करनी है मैनू, ते फटाफट तो गलबात करनी है मेरे नाल, ते दसने मैनू अपने सोहणे सोहणे एक्सपीरियंस। बट फिलहाल सुनदे हां इस सोहणे जे गाणे नू प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੇ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਰਵਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਹਸਾਉਂਗੀ।

0: हां जी, प्रोग्राम 102.7 एफएम रेनबो ते चल रहा है जी। हेलो जलंधर, ते जलंधर तो अलावा भी बहुत आसे पासे दिया जगह तो कॉल्स आ रही ने मेनू, मतलब कि पूरा पंजाब ही सुन रहा है जी इस टाइम प्रोग्राम। अज है भी एक बहुत ही खास दिन, अज है जी आकाशवाणी जलंधर दा फाउंडेशन डे। ते जिन्हां दीआं कॉलां लगियां ने मैं तां इह कहांगी कि ओह लक्की लिसनर्स ने साडे, ते फिलहाल देखदे आं कि अगली कॉल जिहड़ी ओह किहदी लगी है। हैलो, सति श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? बलजिंदर सिंह जी बोलदे हो। बलजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन लई, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। मेरे दिमाग दी तस्वीरां बनदियां पईयां ने, इन्नियां सोहणियां कच्चा वेड़ा ते तुसी रेडियो लेके बैठे हो, ते उधर जी तुहाडे मम्मी ने चाह रखी हुई है, किन्ना सोहना
1: उधर चाह रख देनी जी, उधर चाह जदों आ जानी उधर रेडियो चला देने भी ढाई बज गए, टाइम पीस नहीं हुंदे सी तो उधर इदा आई
0: के। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चाचा हुण भी सुनदे ने सारे फैमिली दे विच के नहीं?
1: हुण भी बच्चे सुनदे हुंदे जदों मैं लाया हुंदा।
0: अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत वधिया लग्या सुन के ये सारियां गल्लां। अच्छा, गाना केड़ा सुनोगे बलजिंदर जी?
1: गाना मैडम जी
0: बलजिंदर जी ने भी एक बहुत ही सोहनी जी अपनी याद जिहड़ी है शेयर की है मेरे।

0: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। 102.7 MHz से ट्यून इन किया होया तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम युववाणी।
1: तुसी सुन रहे हो नौजवानों की आवाज़, सुपनिया की उड़ान ते विचारों की पहचान। सुपने भी नाल, मुस्कान भी नाल, आई एम आरजे भूमिका, लेट्स मेक दिस मूमेंट कमाल। ते बागेश्वर, आज दा जिहड़ा सफर है ना युववाणी प्रोग्राम दा, बड़ा ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि असी लेके आ रहे हैं जी बड़े ही इंटरेस्टिंग सैगमेंट्स।
0: बिल्कुल, अज असी सैगमेंट गल करनी है, गर्मी तो बहुत हो रही है, जेठ हाड़ दा महीना, उदियां धुप्पां शुरू हो गई हैं, ते असी उस दे विच फैशन किवें करना है ओदी गल करनी है, क्योंकि फैशन कदी घटना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बागेश्वर, ते उस तो बाद पूरे 5:30 बजे साडा स्पेशल सैगमेंट जिहड़ा है तुहाडा भी फेवरेट, जी हाँ, दिमागी दंगल शुरू हो जाएगा। ते तुसी कुछ नहीं करना, सानू कॉल करनी है 01812342174 ते देने है जी कुछ बुझारता दे जवाब।
0: बिल्कुल, कुछ बुझारता ते कुछ टंग ट्विस्टर्स जेड़े तुसी सानू बोल के सुनाने ने, ते असी देखते हैं आज दिमागी दंगल कौन कौन जीतता है।
1: जी बागेश्वर, ते आज एक और खास दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। अज असी गल करन जा रहे हैं एक ऐसे दिवस दी जो सिर्फ चानण दी गल नहीं करदा, सगो ज्ञान, विज्ञान, उम्मीद ते मनुखी विकास दा प्रतीक भी है।
0: बिल्कुल, 1960 दे विच फिजिसिस्ट ते एक इंजीनियर थियोडोर माइमान, उन्हां ने लेजर लाइट दे उत्ते काफ़ी रिसर्च कीती, काफ़ी खोज कीती, ते उन्हां दी उस खोज दी ही वरेगंढ नूं मनाउण वास्ते जिहड़ा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जांदा है।
1: दोस्तों, जदों भी असी रोशनी शब्द सुनदे हां तां साडे मन च सूरज दीआं किरणां, चानण वाले दीवे जां तारिआं दी चमक आउंदी है, पर रोशनी सिर्फ देखण दा साधन नहीं, इह विज्ञान, टैक्नोलॉजी, दवाई, संचार ते मनुखी जीवन दे विकास दा इक बुनियाद।
0: बिल्कुल, हुण हत्थां दे विच फोन फड़े हुए आ, ते जिहड़े फोन ते इंटरनेट चल रहा है, लाइट स्पीड इंटरनेट, ओह भी किते ना किते लाइट दी ही देन है। ओह इस तरह जिहड़ी ऑप्टिक्स ने, ऑप्टिक केबल जिहदे नाल इन्नी ज़्यादा स्पीड दा इंटरनेट चलदा है, ओह भी ते इक तरह लाइट दी देन ही हुंदी है।
1: बिल्कुल बागेश्वर, हस्पतालां च लेजर इलाज तो लैके खेतीबाड़ी च आधुनिक तकनीकां तक रोशनी ने मनुखी जीवन नूं बहुत ही अगे तक लै गया। इस लई इह दिन सिर्फ विज्ञानियां लई नहीं, सगो हर उस इंसान महत्वपूर्ण है जो चानण ते ज्ञान नाल

0: और राही यूं ही चलते चलते आपके सामने आ गए हैं वर्ड एक्सप्रेस अगला सेगमेंट लेकर।
1: बिल्कुल ते अगला साडा वर्ड की है जी। बिल्कुल तुसी सही सुनिया जी, साडा अज दा वर्ड एक्सप्रेस है जी वर्ड हिंड। ते हिंड दा मतलब की है? कदे किसे बच्चे नू खिडौने लई रोंदे वेख्या? कदे किसे नू ये कहंदे सुनिया कि नहीं मैं ते यही करना है बस, भावें कुछ भी हो जाए? ते ओही है जी हिंड।
0: बिल्कुल, हिंड दा मतलब जिद, पर सिर्फ जिद ही नहीं, एक माण दे नाल जिहड़ी जिद कीती हुंदी है कि जिवें बच्चा रो रहा है कि ये खिडौना मेरा है, ते एक माण दे नाल कह रहा है ते नाल जिद भी कर रहा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हिंड सिर्फ जिद नहीं हुंदी, कई बार ये शब्द हौसले, पक्के इरादे ते सुपनिया नू पूरा करने लई लगन भी दर्शाउंदा है। जिन्हां दे दिला च हिंड हुंदी है ओ मुश्किलां तों नहीं डरदे। पंजाबी बोली च ये शब्द बहुत ही रूहानी रंग रखदा है। पर जिवें एक अग रोटी नू पका सकदी है ते उसे नू साड़ भी सकदी है, उसे तरह हिंड भी दो तरह दी हुंदी है। चंगी हिंड सुपने पूरे करवाउंदी है ते माड़ी हिंड जो रिश्ते तोड़ देंदी है।
0: बिल्कुल, हिंड जेड़ी है उस एक चीज़ सिखाती भी है सानू कि जिद किसी चीज़ की होनी, सुपने की जिद होनी बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सानू लगातार चलते रखती है। लेकिन एक माड़ी चीज़ होवे ते वो जेड़ी है वो कित्थे एक लाइन ड्रॉ करनी है, कित्थे लकीर मारनी है, वो उसका फैसला तो असी लेना है।
1: बिल्कुल, बागेश्वर पिंडा च अक्सर बुजुर्ग कहंदे ने हिंड चंगी गल ही होए तां इंसान नूं अगे लैके जांदी है, पर जे यही हिंड अहंकार जां गलत गल ही होए तां रिश्ते भी तोड़ सकदी है। इस लई हिंड दा सुंदर पासा ओह है जो इहदी मेहनत सुपनिआं ते हौसले नाल जुड़दा है।

0: कॉलेज वेयर च भी पा सकते हो।
1: बिल्कुल ते इस दे नाल मल्टी कलर दुपट्टा भी पाया जा सकदा है समर दे वेचे, खास करके एक लाइफ सेवर वांगू हुंदा है क्योंकि जेडे ब्राइट कलर ने धुप्प दे विच जदों गर्मी होवे ते ब्राइट कलर जिवें येलो स्काई ब्लू या पिंक ओह बड़ा मूड फ्रैश कर दिंदे ने। ते प्लेन भावें प्लेन वाइट या फिक्के रंग का सूट होवे ते एक कलरफुल जिहा रंगीन जिहा दुपट्टा होवे ते एक बड़ी ही आई कैचिंग लुक दिंदा है। ते गल करते हैं थोड़े मुंडियां दे फैशन दी
0: हाँ
1: भी
0: हाँ बिल्कुल, बॉयज दा भी जरूरी है फैशन।
1: बिल्कुल ते क्योंकि रुमाल ते स्काफ जेड़ा है एक छोटी जी चीज़ है पर बड़ा वधिया कमाल कर सकती है। एक तो बंडाना स्टाइल हो सकता है जेड़ा अजकल मुंडे कुड़ियां दोवें सिर ते छोटे रंग बिरंगे रुमाल जा बंडाना बनते ने, ते ये तो मैं भी कई बार यूज़ किया है ते ये जेड़ा है बड़ा हिप हॉप बड़ी मॉडर्न जी लुक दिंदा है ते
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: बागेश्वर,
1: कूल लुक ही नहीं दिंदा है ते मुड़का अखां में जान तो भी रोकदा है।
0: ठीक है। तो इस तो इलावा तुसी नेक रैप स्टाइल भी अपना सकते हो। लाइट कॉटन का कोई भी रुमाल ले लो, उसनू लूज नैक ते छड़ दो, टाई कर लो। ये भी है जिवें कि परफेक्ट तुहानू लुक देगा ते नाल ही नाल तुहानू कूल वाइब भी देगा। वाइट शर्ट होगी, ब्लैक सन ग्लासेस हो गए, तो उस दे नाल तुसी ये वेयर कर सकते हो।
1: बिल्कुल ते गर्मी दे विच एक रिस्ट रैप जेड़ा है जेड़ा हाथ विच रुमाल फड़ना ते कई बार बोरिंग लगता है पर एक वाइब्रेंट च रंग दा रुमाल जेड़ा रिस्ट ते स्टाइल दे स्टाइलिश ढंग दे नाल बनया होवे ते जदों लोड़ होवे उहनूं वरत लो।
0: बिल्कुल। तो इस तो अलावा तुसी लाइट कलर्स दे ही कपड़े वेयर करो, जिवें मिंट ग्रीन, पीच, लवेंडर। तो इस दे नाल ही नाल तुसी ये जरूर याद रखो कि भई सनस्क्रीन लगानी बिल्कुल नहीं भुलनी, क्योंकि धुप्पा जो ने ना बहुत ही ज़्यादा तिखियां ने।
1: बिल्कुल ते एक तुहानू हैक दसा भूमिका,
0: दसो।
1: एक गर्मियां दे विच जिहड़ा पॉकेट परफ्यूम हैक कि जेब दे विच एक बड़ी हल्की जी खुशबू वाला भावें वह रोज़ वाला होवे गुलाब दा परफ्यूम रखिया होवे ते जदों मुंह ढको ते उसनू ताजगी दा एहसास देगा जदों रुमाल जां दुपट्टे दे उत्ते वह परफ्यूम लगा होवे।
0: क्या बात है, हुण ते ए मैं भी ट्राई करूंगी जरूर। ते दोस्तों, फैशन दा मतलब एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं लेने हुंदा, असली स्टाइल ओ हुंदा है जदों तुसी कंफर्टेबल भी फील करदे हो ते कॉन्फिडेंट भी फील करदे हो। होर गल्लां बातां करांगे, पर उस तो पहले सुनदे हाँ एक प्यारा जिहा गीत।

0: ये नंबर तो सी मिलाना है 0181-2342-174 01812342174 ते इस्तेमाल तुसी सानू फेसबुक मैसेंजर ते आकाशवाणी जलंधर दे पेज ते भी मैसेज करके अपने जवाब भेज सकते हो। ते भूमिका पहला सवाल पहली बुझारत पूछ लिए फिर साढ़े
1: बिल्कुल।
0: श्रोतियों ने।
1: ते पहली बुझारत है जी, लंबी गर्दन निक्के कन, नाम रख्या मुल्तान, लोकी चौण हरियाली, ए चाहे रेगिस्तान। मैं दोबारा बोल दिंदी हाँ जी, लंबी गर्दन निक्के कन, नाम रख्या मुल्तान, लोकी चौण हरियाली, ए चाहे रेगिस्तान। ते फटाफट सानू कॉल करो 01812342174 ते।

0: हेलो जी।
1: दे भूमिका में लगता है बड़ा सौख है। मैं भी दोबारा दोहरा दिना है, जिन्ना ज्यादा सोकदा है उन्ना ज्यादा गिल्ला करता है। ते सुनते रहो ये गीत, ते देखते हैं साढ़े नाल लिसनर्स की जवाब देंदे ने।

0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी साढ़े नाल प्रोग्राम दे विच जुड़न दे लई ते सानू जवाब देन दे लई।
1: हाँ थैंक यू मैडम।
0: ओके जी, ते दोस्तों इस दे नाल ही अगली बुझारत भी पूछ ही लैंदे आ। ते अगली बुझारत है जी, काली कलोटी मिठे ओदे बोल, घर ओदा है नहीं रहिंदी अंबा दे कोल। दोबारा बोल दिंदे आ जी।
2: काली कलोटी मिठे ओदे बोल, घर ओदा है नहीं रहिंदी अंबा दे कोल।
0: फटाफट सानू कॉल करो 01 8 1 2 3 4 2 1 7 4 ते।

हाँ जी, एक बारी फिर तो तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम जिस दा नाम है लव यू जिंदगी दे विच, ते मैं तुहाडी दोस्त वंदना बनी हुई हां इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल। जी हाँ, एक इदां दा प्रोग्राम, एक इदां दा सैगमेंट जिहड़ा सानू सिखांदा है कि जिंदगी दे विच पॉजिटिव एटीट्यूड ते पॉजिटिव नज़रिया रखना किन्ना जरूरी है। एक इदां दा प्रोग्राम जिहड़ा जिंदगी नू प्यार करना सिखांदा है, जिंदगी दे नाल मुहब्बत करनी सिखांदा है, ते जिंदगी दे विच इह सिखांदा है कि रिजैक्शनस जिहड़ियां ने उह हुंदियां ही रहिंदियां ने, उह चलदियां ही रहिंदियां ने, पर रिजैक्शनस नू फेस करके जिंदगी दे विच अगे किद्दां वधना है। जी हाँ, प्रोग्राम लव यू जिंदगी जिदे विच असी अज गलबात करांगे एक इदां दे ही टॉपिक दे उत्ते। केड़े टॉपिक दे उत्ते? टॉपिक कि लाइफ दे विच रिजेक्शनस आंदियां रहिंदियां ने, मुश्किल आंदियां रहिंदियां ने, और असी की करदे हां, असी हमेशा नैगेटिव होके जिंदगी दे विच जे कोई भी काम शुरू किया हुंदा ना, थोड़ियां जिहियां भी मुश्किल आ जांदियां ते असी नाले गिव अप कर दिंदे हां। पर गिव अप करन दी बजाय जिंदगी विच कहिंदे

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

हाँ जी, प्रोग्राम चल रहा है जी लव यू जिंदगी, ते तुसी बने हुए हो मेरे नाल यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल, ते एफएम रेनबो दी घड़ी दे उत्ते वक्त हो गया जी 6:12:25। अज असी गलबात कर रहे हाँ रिजैक्शनस के बारे में या फिर जिंदगी दे विच आने वाले फेलियर्स के बारे, जिन्हां नू सोच के जिन्हां नू देख के असी ना एक कदम अपना पिछे कर लैंदे हाँ कि नहीं मेरे तो होना नहीं है कुछ। और असी हमेशा ना दुनिया दे विच अद्धे नू ज़्यादा लोगों की परेशानी है कि असी दूसरों देख देख के दुखी होने रहने कि वह बहुत सुखी है, शायद उसकी जिंदगी दे विच कोई दुख है ही नहीं है, मेरी ही जिंदगी दे विच दुख लिखे हुए हैं सब तो ज़्यादा, पर फैक्ट ये नहीं है। सच्चाई ये है कि उस इंसान नू असी हले पढ़िया नहीं है, असी जानिया नहीं है, इस करके सानू दूरों दी वो इंसान बहुत सुखी लगता है। ते यही सोच कि जिंदगी दे विच प्रॉब्लम्स जड़ियां ने वो सारियां दे नाल आंदियां रहिंदियां ने, असी अगे वध सकदे हां इस सोच दे नाल। एक छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा सवेरे न्यूज़पेपर्स नू डिस्ट्रीब्यूट करदा सीगा, अखबारां सुट्टन जांदा सीगा, किसे ने सोचा सीगा कि एक दिन भारत दा राष्ट्रपति बनेगा वो बच्चा? नहीं, शायद किसी ने नहीं सोचा सीगा, पर शायद उस बच्चे का विजन बहुत जड़ा ना दूर दा सी। मैं गल कर रही हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। एक इदा की शख्सियत

हाँ जी, प्रोग्राम चल रहा है जी लव यू जिंदगी, ते तुसी बने हुए हो मेरे नाल, यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल। ते अज असी गल कर रहे हैं रिजेक्शंस दे बारे विच, नेगेटिविटी दे बारे विच वी, ते नाल नाल उथों दी सीख के असी पॉजिटिवली किद्दां जिंदगी दे विच अगे वधदे हां उहदे बारे च, ते नाल नाल असी गल कर रहे हैं कुछ कुछ पर्सनैलिटीज़ दे बारे च जिन्हां दे बारे च मैं तुहानूं दस रही हाँ कि जिंदगी उहनां वास्ते भी सौखी नहीं सी। अच्छा, तुहाडे सारयां दे विचों दी नॉन वेजिटेरियन दे शौकीन भी बहुत सारे लोग होणगे जिन्हां नूं नॉन वेज खाणा बहुत पसंद है। आ गया मूंह दे विच पाणी। ते अच्छा, नॉन वेजिटेरियनस तां खैर मतलब पसंद करनगे, ते इहदे नाल नाल इक चीज़ होर, इक इदां दा ब्रांड जिन्हूं सिर्फ नॉन वेजिटेरियनस ही नहीं वेजिटेरियनस भी बहुत चंगी तरह दे नाल जानदे ने, ब्रांड KFC, जिहदी पूरी जिहदा पूरा नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। सब ने सुनिया होना है नाम इहदा। ते इस ब्रांड दे पिछे दी कहानी की है, कौन है वो इंसान जिन्हें ये ब्रांड बनाया। तुहानूं पता है जदों 60 पार कर जाने असीं, 60s तो पार होके हर इंसान ये सोचता है कि हुण मैं जिंदगी दे विच बहुत काम कर लिया, हुण तां मैं आराम करना। पर केंटकी फ्राइड चिकन दे जड़े मालिक ने कर्नल सैंडर्स, और जड़ी फोटो तुसी देखते हो ना वाइट एक शर्ट दे विच, एक उत्थे जड़ा उन्हां दा लोगो है उहदे नाल, वह है उन्हां दे फाउंडर दी फोटो, कर्नल सैंडर दी फोटो। उन्होंने 65 ईयर्स दी एज दे विच ड्रीम देखिया सीगा अपना नवा ब्रांड बनाउण दा ते सक्सैसफुल होण दा। जी हाँ बिल्कुल, अपनी पहले वाली जॉब तो रिटायर होके उन्होंने ये नहीं किया कि हुण मैं जिंदगी च आराम करना है। वो रुके नहीं, वो थके नहीं, उन्होंने प्लान किया कि हुण मैं जिंदगी दे विच कुछ वो करना है जिहड़ा मेरा सपना है करन दा। जी हाँ, उन्होंने इंज लगता सीगा कि उन्हां दी एक रेसिपी इनवेंटेड जिहड़ी रेसिपी सी कि फ्राइड चिकन की रेसिपी, उन्होंने ये लगता सीगा कि इहदी जिहड़ी रेसिपी है ये मैं सैल करांगा किसी भी वधिया फूड वेंडर नूं, ते जदों सेल्स वधेगी ते उहदे विच मेरा मार्जिन होएगा, तो दैट मीनस मेरा जिहड़ा आफ्टर रिटायरमेंट जिहड़ी मेरी प्लैनिंग है वह मेरी जिंदगी दे विच मतलब लोंग टर्म सोचिया उन्होंने कि अच्छे तरीके दे नाल कट जाएगी मेरी लाइफ। ते इस वास्ते उन्होंने की किया कि अपने इस सपने नूं पूरे करन लई उन्होंने जगह जगह दे उत्ते वेंडर्स दे नाल अलग अलग थावां दे उत्ते गलबात करनी शुरू की। पर ये इन्ना सौखा भी नहीं सी, उन्होंने बहुत सारिया जगह दे उत्ते जाके गलबात की, फॉर्मल टॉक जड़ी है स्टार्ट करन दी कोशिश की, पर उन्होंने किते भी सक्सेस नहीं मिलिया। और तुहानू पता है जड़ा उन्होंने लोगो दे नाल उन्होंने वाइट शर्ट पाई हुंदी है कर्नल सैंडर ने, सैंडर्स ने, उन्होंने जड़ी वो पिक्चर है

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर द रेनबो चैनल। और शाम दे 8:03 हो चुके हैं, 4 मिनट हो चुके हैं और प्रोग्राम शुरू करने का समा हो चुका है। ये प्रोग्राम केड़ा है जी? नैट वाणी जी। बिल्कुल जी, थोड़े नैट की वाणी की कहती है इस दे बारे असी पूरी जानकारी नहीं, जानकारी तो वैसे तुहानू भी है, बस असी दसांगे भी तो जानकारी जी होर जानकारी हो तुसी उत्तों किद्दां लै सकते हो और नैट के उत्ते अपडेट्स कि आई हैं, कि नवे ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस दे बारे पूरी जानकारी असी तुहानू दवांगे। दोस्तों IPL सारे ही देख रहे हैं जी। बिल्कुल जी, IPL कोई नैट पर देख रहा, कोई TV देख रहा, कोई अपने मतलब किसी भी चैनल के थ्रू देख रहा, और मैं भी लगातार मतलब लाइव देख रहा। लाइव मतलब मैं मैच नहीं देख रहा, लाइव स्कोर अपडेट्स जोड़े हैं वो देख रहे हैं जी। बिल्कुल तुम अपने फोन के उत्ते जो मीटिंग बैठे हो, कितने भी बैठे हो, मैं पता IPL तो बिना कोई रह नहीं सकता। जी बिल्कुल जी, IPL है ही चीज़ इदा, इंडियन प्रीमियर लीग जी चल रही है वो

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा केंद्र और तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी। केड़ा वाला नेट वाणी अपने दोस्त कुलदीप दे नाल जी। बिल्कुल जी, असी गाना सुनिया मिले सुर, जड़ा कि दसदा है जी सारे सुर मिलके एक बहुत ही बेहतरीन या एक म्यूजिक बना देंगे ने। और उस तरह जिदा कि असी IPL की गल कर रहे, IPL दे विच भी सारे जो प्लेयर्स ने मिलजुल के खेड के बहुत वधिया तरीके नाल मनोरंजन करते हैं और उहदे विच एक जुटता भी दिखाई दिंदी है और एक दूजे नाल तालमेल भी बहुत वधिया जिहड़ा दिखाई दिंदा है। नैट वाणी प्रोग्राम दे विच असी नैट दे बारे ही गल्लां करनियां, नैट दे उत्ते की ट्रेंड चल रहा है उस दे बारे गल्लां

बस रुको जो होने नचना हाँ जी मैनू पता तुसी नच रहे सी क्योंकि मैं भी इतने नच रहा सी मैनू साह चढ़ गया है हाँ जी दोस्तों यहोजे गाने सुन के ना सच्ची नचन का दिल करता है और एनर्जी जी आ जाती है और समा है जरा वाला समा होंगे ना नौ साढ़े नौ दस बजे तक का जरा इस एनर्जी भी चाहिए होंगी मतलब शाम के जो चाह पी लें उदो वक्री जी एनर्जी आ जाती है और थोड़ा जहा अपने आप में ना मतलब एनर्जी में लिया भी चाहिए है थोड़ी फैट बर्न आती और थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और दोस्तों बाकी एक्सरसाइज के बारे और कुछ होर टिप्स भी तुहाडे नाल शेयर करांगा पर उस तो पहला एक सब तो जरूरी जे तुसी एक जागरूक नागरिक हो तो थानू ओ जानना मतलब उहदे बारे एक जानकारी देना चाहवांगा साडा एक सेंसस चल रहा है पूरी इंडिया दे विच जिहड़ा कि सेंसस 2027 दे नाम दे उत्ते इह चल रहा है इह सेंसस पहला 2021 भी होना सी लेकिन करोना करके यह जड़ा सेंसस नहीं हो सकिया इसलिए यह सेंसस हूँ 2027 जा रहा है इसका नाम भी 2027 के नाल तो ही चल रहा है और इस भी सेगा कि तुसी सेल्फ इनमरेशन कर सकते CMMS पोर्टल के उत्ते सेंसस मैनेजमेंट एंड मोनीटरिंग सिस्टम इनू किया जाता है वैबसाइट का नाम है sc.census.gov.in दोबारा दस दिना जे तुसी गूगल दे विच जाओगे तो सेंसस CMMS लिखोगे तां वी आ जाएगा सेंसस मैनेजमेंट

एंड एंड मोनिटरिंग सिस्टम लिखोगे तो ही आ जाएगा, या फिर वेबसाइट डायरेक्ट लिखोगे, नोट कर लो SE.CENSUS.GOV.IN ये लिखोगे तो ही आ जाएगा। सेंसस होंदा की है? सेंसस का मतलब है जनगणना, कि साडे जिहड़ी पॉपुलेशन है, साडे जिहड़े घर किन्ने है, पानी की सप्लाई होगी, A to Z जो भी है, गलियां किन्नी है, सब कुछ वो किया जाता है। तो दो चरणों के हो रहा है। जो पहला फेस है ये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स जोड़े आ जी ब्लॉक्स, मतलब जिन्हें भी घर है या एक ब्लॉक्स के किन्ने घर है या कि बिल्डिंग्स है, किन्ने परिवार रह रहे हैं, सारा कुछ वो आएगा। जिन्हों मरदमशुमारी आप कह दें, उस तो बाद जो सैकेंड फेस है वह तकरीबन अगले साल यानी जनवरी तो बाद ही किया जाएगा, जिद पॉपुलेशन सारी आदि जनगणना की जाएगी। सो दोस्तों, जो तुम सैल्फ इन्यूमरेशन यानी कि अपने बारे सैल्फ इन्यूमरेशन की जानकारी देना चाहते हो तो तुम इस पोर्टल के उत्ते दे सकते हो। इस तो अलावा जेकर तुहाडे कोल कोई परसन आता है और सेंसस के बारे तुहाडे तो जानकारी लेना चाहता है तो तुम पूरा सहयोग देना उन्होंने और पूरी जानकारी जी उन्होंने प्रोवाइड करनी है। ये अपने साथियों नाल भी सांझी करनी है क्योंकि यह हर जगह पर हुंदा है और लोग समझ लेंदे ने कि पता नहीं की हो रहा, पर हाँ जरूर ये जरूरी है क्योंकि ये एक फेक चीज़ा भी हो सकती ने, कोई जड़े तो धोखाधड़ी करने वाले बंदे वो भी आ सकते हैं। सो सब तो जरूरी है तुसी उन्हां दा आईडी कार्ड देखना, घर के अंदर नहीं वाड़ना, जे वाड़ सकते हो, जे तुसी उन्हां दे तो ट्रस्ट करते हो, तुहाडा कोई MLA या कोई भी होर परसन लैके आ रहा, सरपंच या कुछ भी वो लैके आ रहा तुहाडे कोल, तां तुसी ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन जे तुहानू कुछ भी डाउट लगता तो तुसी उन्होंने अपनी जानकारी नहीं देनी है। सो ये सी कुछ अपने जिहड़े हुण अजकल जो चल रहा है अपने पोर्टल के उत्ते नैट के उत्ते और जिहड़ी कार्रवाई पूरे इंडिया के विच चल रही है, इस दे बारे छोटी जी जानकारी सी। तो इस नू भुलना नहीं है, बहुत जरूरी है जे तुसी जागरूक नागरिक हो। तो भुलन के उत्ते एक प्यारा जिहा गीत भी सुन लैंदे हां। जाना कि तां नहीं सुन रहे FM रेनबो जलंधर, दिल तो दिल तक।

हाँ जी दोस्तों, रोटी खा ली है जो खा रहे हो जी? हजे खानी है। मैं तो क्यों पूछ रहा जी, अज कल स्नैक्स भी ट्रेंडिंग ते चल रहे हैं। वैसे स्नैक वाला टाइम नहीं है, क्योंकि कई तो इस वेले रोटी खाते हैं, कई तो बिल्कुल भी नहीं खाते, और कई सलाद सलूद खा के सो जाते हैं। स्नैक्स ट्रेंडिंग में ता कर रहे हैं क्योंकि अजकल सब कुछ जोड़ा है मिनी, मतलब एक मिनी वर्ड है ना जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और ट्रेंड बन गया जी मिनी वर्ड का। और मिनी नू यानी कि स्नैक्स दे विच ले आंदा है कि मिनी पोर्शन, यानी कि स्नैक्स लोग ज़्यादा खाने लग पे ने मेन कोर्स, मतलब रोटी नू छड़ के, क्योंकि छोटी छोटी जी डाइट आ और लेंदे ने, छोटी छोटी वैजिटेबल्स हो गए या कुछ भी आ, उन्होंने चीज़ों नू मिला के वो लै रहे हैं और अपने आप नू हेल्दी रखना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल 27% खपतकार छोटे कंट्रोल्ड पोर्शन चाहते हैं और बाइट साइज पैक, मल्टी पैक, हल्के पर सैटिस्फाइड करने वाले स्नैक्स जोड़े आ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने आते हैं। यानी कि ये क्यों आते हैं, क्योंकि दिन पर वार वार खाने लिए परफेक्ट होंगे ने, और सोशल मीडिया से भी ये छोटे छोटे फॉरमेट हिट होंगे ने। क्यों होंगे ने, कि छोटी वीडियो होंगी है उस दे विच जिहड़ा जिहड़ा भी क्रिएटर है वो बड़े आसानी नाल कुछ क सैकेंडा के विच ही एक डिश बना के तैयार करके थोड़े मोहरे रख दिंदा है। मतलब वीडियो आप देखते ही हैं और वो जी वैसे मतलब टेस्टी भी होंगी है, फायदेमंद भी होंगी, कई चीज़ होर भी फायदे होंगे ने। और मिनी पर यानी कि पोषण के भरपूर डाइट जी तू प्रोवाइड हो जाती है।

FM 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल और स्टूडियो की घड़ी के 9:03 हो चुके हैं और तुहाडा फेवरेट वाला जिहड़ा प्रोग्राम है शुरू हो चुके जी अपने दोस्त कुलदीप दे नाल तुहाडा शो जिहड़ा मैं शुरुआत कर चुके हैं जी। और ये करना की है मैनू पता, वैसे तुसी शुरुआत कर चुके हो, मेरे तो पहले ही शुरुआत तुसी करती सी। बिल्कुल जी, नंबर है जी 9855101027 9855101027 इस दे उत्ते तुसी करनी है जी फरमाइश अपने हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दी, पुराने जिहड़े गीत हुंदे ने और प्यारे प्यारे जे गीत हुंदे ने और वह तुसी साडे नाल सांझे करने आ, और कुछ प्यारा जिहा मैसेज विच लिख दोगे तां उह वी जिहड़े साडे लिसनर्स लई उह वी मैं शामिल करन दी कोशिश करूँगा। सो शुरुआत करते हैं एक प्यारे जे गीत तों, ते तुसी मैसेज भेजो, मैं देखदा हुण इधर तुहाडी फरमाइशां पूरियां करदा जी।

FM 102.3 MHz से है आकाशवाणी जलंधरदार रेनबो चैनल, और तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी दिल चाहता है अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। जी मैसेज आए साढ़े को आदरणीय प्रसारक जी, नमस्कार आदरणीय प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। लिखे किरण है जी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तो जी मैसेज लिखा जी। उस तो बाद चक 14 PSB जिला श्री गंगानगर तो कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, वनराज विरक ते ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।

हाँ जी दोस्तों, इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम दिल चाहता है अपने दोस्त कुलदीप दे नाल, पर कुछ होर ही समझ रहे ने लोग। मैनू मैसेज आया जी, स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, और मैसेज किया है जी, सागर अरोड़ा गांधी सागर डिस्ट्रिक्ट मंदसौर मध्य प्रदेश तो किया जी। लिख रहे ने हरीश जी, सत श्री अकाल सर जी, सॉरी मेरा नाम कुलदीप है जी। वैसे हरीश जी का प्रोग्राम भी बहुत वधिया होंदे ने, बहुत मज़ा आता उन्होंने प्रोग्राम सुन के, और मैं भी उन्होंने प्रोग्राम सुनता रहना है। और जो वैसे मेरा नाम कुलदीप है, अगर कुलदीप लिख इतों पता लगता है कॉपी पेस्ट मार रहे ने। नहीं नहीं मजाक कर रहे। चलो, आम्रपाली मूवी सोंग का इन्होंने क्या सोंग क्या है, तुम्हें याद करते करते जरा वो सुना दिता जाए जी, जरूर थोड़ी फरमाइश पूरी की जाएगी। फरमाइश रेडी है जी, और तुम भी फरमाइश पूरी करवा सकते हो, करना कुछ नहीं है। 9855100207985510 1027 के उत्ते सानू एक मैसेज करना है प्यारा जहा, और थोड़ी जी फरमाइश आ यानी कि हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतों की फरमाइश जी है, थोड़े दोस्त कुलदीप पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा।

दोस्तों एक मैसेज हो रहा है जी झज्जर हरियाणा तो बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया और कह रहे ने कोई भी सदाबहार गीत दे विच शामिल किया जाए जी। और एक और मैसेज आया साढ़े कोल कह रहे ने जी मैसेज किया है जी आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें। लिखिया जी जॉन डिकैस्ट्रो रोजी डिकैस्ट्रो पर्ल डिकैस्ट्रो विलिस डिकैस्ट्रो जी ने मैसेज किया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेड होस्ट जी भाई थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम विद लवली सॉन्ग्स जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इस अलावा एक होर मैसेज जरा साढ़े को आया वह भी आप शामिल कर लें इस प्रोग्राम के। कह रहे जी प्रोग्राम दिल चाहते हैं पिंड कल्याण मलका जिला बठिंडा तो अमृतपाल सिंह रामगढ़िया परमिंदर सचनूर और अमरिंदर जी ने मैसेज किया जी। फरमाइश लिखे लिखे जो खत तुझे कन्यादान मूवी का शशि कपूर आशा पारेख कास्ट है सिंगर है मोहम्मद रफ़ी और म्यूजिक है शंकर जयकिशन जी और लिरिक्स ने गोपाल दास नीर जी ने। यह मैं अपनी जानकारी तो नहीं दस रहा ये सर ने लिखी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए और इन्नी जी कलैक्शन अपने को रखने के लिए। आओ सुनते हैं प्यारा जहा गीत और पर जाना कितने नहीं है तुम भी अपनी फरमाइश लास्ट जे 8 मिनट के पूरी करवा सकते हो 9855 10 10 27 9855 10 10 27 के उ पुराने हिंदी से पंजाबी फिल्मी गीतों की फरमाइश थोड़ा दोस्त पूरी करेगा जी। और आओ सुनते हैं इन्हों की फरमाइश किया हो गीत

ने अपा मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा जी दी जुर्माना सावन के झूले पड़े। ये पदमपुर जिली जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो इन्होंने मैसेज किया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और इन्होंने फरमाइश अपा रेडी कर ली है जी, और फरमाइश अपा थोड़ी देर बाद प्ले कर दें, बाकियों के मैसेज एक बार ले लेने। मैसेज आया जी दनोरी तैलीवाल तो, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी ने कह रहे हैं कोई भी गीत। एक मैसेज किया जी सानू, सानू नहीं पता किन्होंने किया लेकिन लिखा जी हैलो सर, और हैलो सर लिख के इन्होंने मतलब कह दिता है। और इस तो अलावा जो साढ़े को मैसेज हो रहा है जी, रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द सिंह, राहुल जी ने मैसेज किया है जी, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो जी। इस तो अलावा सानू जजोड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली, निशा शाहीन, यासमीन, अरमान मलिक वालों सारे आकाशवाणी परिवार को प्यार भरी सत श्री अकाल जी कह रहे हैं कोई भी गीत। उस तो अलावा जो मैसेज साढ़े को आया जी, और आया जी

नेहा जी ने एक बहुत ही प्यारी कविता लिखी है, लिख रहे ने, कुछ पल ठहर कर हमसे भी दो प्यारी बातें करो, कभी खुद से भी ज्यादा तुमसे हमसे तुम प्यार करो, रूठने मनाने की हम जोलियों में हमें भी कभी तुम शामिल करो, छोटी कुछ खुशियां किस्से कहानियां हमसे भी कभी तुम बयां करो, हंसते रुलाते साथ हमारे तुम आगे बढ़ो, अपने ख्यालों में अनजानी राहों में हमसे भी कभी तुम प्यार करने की हिमाकत करो, कभी कुछ दूर चलकर पीछे मुड़कर हमें भी कभी तुम याद करो, दो पल ठहर कर कुछ प्यारी बातें करो।

मेरा साजन प्यारा दिलकश अजीज़ है, उसके बिना जीवन मेरा लगता मरीज़ है। उसकी बातें लगती सुहानी, उसकी बातें लगती सुहानी दिल को भाती हैं। जब भी दूर जाते हैं मुझसे उनकी याद आती है।

FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर का केंद्र, और रात दे 10:31 हो चुके हैं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी, एक प्यार का नगमा है।

सब पूछते हैं मुझसे बता तो तेरा यार कैसा। सब पूछते हैं मुझसे बता तो तेरा यार कैसा है। बस इतना कहती हूँ उनसे बड़ा भोला और सीधा सा है। बहुत प्यार करता है पर कभी शब्दों में बताता नहीं है। हर पल परवाह करता है मेरी पर कभी जताता नहीं है। कभी जो रूठ जाऊँ उससे प्यार से गले लगा लेता है। उसके प्यार के आगे मेरा गुस्सा कहाँ टिक पाता है। मेरा हर दिल उनसे है, मेरी हर शाम उनसे है, दिल की धड़कन उनसे है, होठों पे हंसी उनसे है। बिन कहे वो समझ जाता है मेरे दिल की हर बात। दुआ है दिल से मेरी ना छूटे कभी तेरा साथ।

देखकर तुझको सांसें मेरी हवाओं से लबरेज हो जाती हैं, धड़कने हैं कि संभलती नहीं उसी पल तेज हो जाती हैं। सुकून दे सकूं हर वक्त तुझको, सुकून दे सकूं हर वक्त तुझको, बातें ये मेरी सेज हो जाती हैं। यूं तो खरा हूँ अपने अंदाज में, ये रूह है कि रंगरेज हो जाती हैं, ये रूह है कि रंगरेज हो जाती हैं।

तेरा हुस्न है जैसे कोई इबादत का नूर, जिसमें बसा है मेरी ज़िंदगी का सुरूर। चांद भी शर्माए तेरी एक झलक पाकर, चांद भी शर्माए तेरी एक झलक पाकर, तारे उतर आते हैं ज़मीं पर मुस्कुराकर।

सजी है महफिल चिराग रोशन है, सजी है महफिल चिराग रोशन है, चारों तरफ महके हुए गुलशन है। कोई जाम झलक रहा है खुशी में, कोई जाम छलक रहा है खुशी में, तो कोई अश्क छुपा रहा है महफिल में।